आज हम म्यूजिक की थेरेपी तो चला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथियों के जो संदेश हमारे पास आए हैं उन्हें भी शामिल करना जरूरी है, वरना थेरेपी का कोई फायदा नहीं होगा। सारे नादों की आज समय है कम, 10:55 तक ही आज हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप सभी सुनेंगे सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात, तो उसे जरूर सुने। और हमारा प्रोग्राम आज सुबह 10:55 तक, तो समय कम है, अंदाजा आपको है ही, तो नाराजगी मत रखिएगा अगर आपकी मेल शामिल ना हो पाई, कोशिश पूरी आपके संदेशों को शामिल करूं। सबसे पहले मेल में ले रही हूं अहमद फूलवाले जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा है छोटी बलिया मुंबई करजत से, इमरान अहमद आसमा और अपने समस्त परिवार की तरफ से। इन्हें भी आशंका है कि शायद हम इनकी मेल को नजरअंदाज ना कर दें, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। अगला संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से

दर्शक की तो बात ही अलग थी, उसका अंदाज ही अलग था। और उम्मीद करते हैं कि इन गीतों को सुनकर आपकी भी यादें पूरी ताज़ा हो चुकी होंगी, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि जो नए लोग हैं, युवा हैं, जो यूथ है, उन्हें भी ये गीत पसंद आते हैं। और हमारे जो 90 के दशक के साथी हैं, जो उस दौर में पले बड़े हैं भाई, उनके अंदर तो कहते हैं ना मौसीकी कूट कूट कर भरी गई थी। वो जो अंदाज बयां करने का, मौसीकी, शायरी और अपनी मोहब्बत, ये सब चीज़ें तो वो इन गानों के जरिए ही एक्सप्रेस कर देते थे। और अब ले लेते हैं हम संदेश, क्योंकि देखिए पिटारा हमने खोल ही दिया है।

कर भेजा है। तो साथियों आपको बता दूं बहुत सारे साथी अभी

0: देख रही हूँ रजक मोहम्मद जी का भी संदेश हम
1: मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है।

0: السلام عليكم مريم يترك جانا يشج بين اشبي كيلوهرتز مريم يستونتج نغاب جانا يشج بين اشبي كيلوهرتز اف ام ريا شريا تشيك ميجاهرتز دون موبايل اب نيوز اون اريكا ديو اكاش فاني كرجلين دي نيم فرچو پت پي فسبا پروگرام چي خوري
1: ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
7: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन

मिशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है se.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज
और राष्ट्र

के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों

अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति

को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलेंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है, ऐसे प्रयास

कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है।

0: जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं, तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?
3: दिस मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली के नंग नेट पिन मीडिया में दोनों एफएम के जो आकाशवाणी करके लिए कसता मन की बात प्रोग्राम में पूर्वी तर्जुमा प्रचुगत नियन मजद
4: नी रियासती दी मेहमान सुन नमस्कार यंग रश्चिक सितंबर इल्जियानुक मन की बात सिर पे स्ट्रोलिका यंग

असिस्टोसीन मोडेरा डांस फेस्टिवल जनवरी मकर संक्रांति ग्यपना गोजुक छात ग्रानुक भारती रिगजुंग नंगयंबो क्लासिकी से सगे नरचन स्पेसरिक थोंगमा छात नाजियान तंसा रिश्चिक मोडेरा युल्ला जिक्स खोर बसे भारती दी स्पेस चन विरासत पो जिक जरे जुआबेत अचुनून नतस दरा इन नंग गलतुस पुंगयंबो थुदलुक सुतानपो जक्सियो

0: हर रविवार 12:10 पर हम हाजिर हो जाते हैं अपनी प्यारी ग्रामीण सखियों और बहनों के लिए और लेकर आते हैं उन्हीं पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ रेनू तवर, यानी कि डबल रेनू है आज हम
1: और मैं हूँ रेनू सैनी
0: जी। तो हम दोनों मिलकर अपने प्यारे श्रोताओं को करते हैं राम राम, राम। तो भाई रेनो, आज देखो त्योहारों के जो चीजें चल ही रही हैं, लेकिन साथ साथ कल से शुरू हुआ है पितृ पक्ष। हाँ, और ये हमारे धर्म में सबसे कहते हैं ना, पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है, कृतज्ञता होती है, श्रद्धा हम प्रकट कर सकते हैं। तो एक बेहद ही पवित्र और बहुत ही अच्छा कहते हैं ना, उनके लिए भाव व्यक्त करने का समय है।
1: और देखो रेनू, कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत महान है, उसमें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कैसे पता चलेगा अपने पूर्वजों के बारे में। तो ये जो पितृ पक्ष है, एक कृतज्ञता हमें व्यक्त करने के लिए आते हैं जो हर वर्ष आते हैं, साथ ही जो हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको, कि कैसे उनके अंदर संस्कार के जो बीज है वो रोपित होते हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज आज जो हमारे बीच नहीं है, वो अपने कर्मों से बहुत कुछ ऐसा करके जाते हैं जो सुविधाएं पहले नहीं थी मगर अब हमारे पास है, आने वाली पीढ़ी के पास है। तो उन्हें कैसे
0: और ये कहते हैं ना, पीढ़ी

0: पीढ़ी तभी चलता है जब उनके संस्कार, उनके जो संस्कारों के बीज हैं वो हम पर आए, फिर हमने उनको आगे अपने बच्चों में डाला। तो इसी तरह से ये कहते हैं ना, यादें हैं जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमेशा हमें समर्पित हम करेंगे, और आगे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी इसी तरह से उनको ये श्रद्धांजलि और उनको भी ये समर्पित करें, तर्पण दें, पिंड दान दें, ताकि कहते हैं 15 से 16 दिन जो है ना, ये लोग हमारे दिवंगत परिजनों की जो मृत्यु है उन पर हम उनको पिंडदान करते हैं। तो कहा जाता है जो इस समय हम जो उनके लिए करेंगे या जो उन्हें पसंद था उन्हें हम खिलाएंगे, उनके लिए दान करेंगे, तो वो उन तक मिलता है।
1: बिल्कुल उन तक मिलता है। और इसके पीछे पीछे मनोवैज्ञानिक यही अवधारणा है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो भी इन संस्कारों को सीखें और कुछ ऐसा करें कि जीवन में देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए जो कल्याणकारी हो।
0: बिल्कुल
1: यही यादें जो होती हैं हमारे बच्चों को नई बातें सिखाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो इस तरह से यादें रह जाती हैं और ये यादें बहुत खूबसूरत होती हैं, है ना। अच्छा, हम आज जैसे बात कर रहे हैं तो आज कुछ खास दिन भी हैं, जैसे कि विश्व पर्यटन दिवस, और
1: बिल्कुल, और जैसे सितंबर के चौथे रविवार को बेटी दिवस ही मनाया जाता है।
0: अच्छा
1: भाई देखो, आजकल बेटियां हैं तो सब कुछ है, बिना बेटियों के ना घर हमारा जो होता है वो जगमगाता है और ना ही देश जगमगाता है, ये हम देख ही रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: विश्व नदी दिवस भी है आज।
0: जी, और हम आज बात करेंगे एक ऐसे महान राजनीतिक नेता की जो कि जिनकी आज जयंती है,

0: साल 27 सितंबर को मनाई जाती है। उनका जन्म 27 सितंबर 1873 को गुजरात के नाडियाल में हुआ था और उन्हें लोह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई जो हैं वो उनके बड़े भाई थे। और इनकी बहुत सारी ऐतिहासिक बातें हैं। वो पहले भारतीय स्पीकर अध्यक्ष रहे और इसी तरह से उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर काफी समय पर गुजारा है।
1: इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की। और देखो इनके साथ साथ ही आज एक और बहुत ही महान व्यक्तित्व है जिनकी आज जयंती है। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहनों के लिए विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की। और मन की बात में आज हमारे माननीय मोदी जी ने इनके कार्यों की सराहना भी की है। तो देखो ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वही हमारे देश को आगे लेकर जाते हैं और कुछ ऐसी बातें छोड़कर जाते हैं जो कि हमारे देश का जो तिरंगा है वो पूरी शान से लहराता है और हमें प्रेरणा भी देता है।
0: बिल्कुल। और इसी से प्रेरित होकर हमारे जो आज की यंग जनरेशन है कि जो नव युवक है वो भी प्रेरित होते हैं।

0: और हमारी ग्रामीण बहनों के लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे तिरंगे को और ऊंचा उठाने के लिए, हमारे विश्व के जो पूरा विश्व है उस पे हमारे देश को की एक नई पहचान बनाने के लिए सेवा संकल्प अभियान के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए राष्ट्र निर्माण, सेवा भाव और विकसित भारत के संकल्प पर भी जोर दिया है। और हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारा देश है वो पूरी तरह से विकसित भी हो रहा है। और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच यह जो यात्रा चल रही है सेवा संकल्प अभियान की, और देखो रेणु, इसमें युवा पौधारोपण, स्वच्छता अभियान पर भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि हम जान सकते हैं कि अगर हमारे देश में पौधारोपण हो रहा है, स्वच्छता अभियान होगा, तो हमारा देश जगमगाएगा और हर ओर हरियाली से खिलखिलाएगा।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से कहते हैं ना कि हमारी जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर जगह आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से आप बात करें, योग हो, ध्यान हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस कार्यक्रम में जैसे बातचीत भी लेकर आते हैं और बहुत सारी खास बातें लेकर आते हैं जो हमारी बहनों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा खास होती हैं। तो आज जो खास बात है वो हम लेकर आए हैं, जो कि योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य किस तरह से होता है। डॉक्टर एन एस यादव जो हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जिन्होंने ये जानकारी दी, और इनसे जानकारी ले रही हैं कमलेश मुद्गल।
0: तो चलो भाई, हम अपनी बहनों को सुनवाते हैं योग करके, ताकि वो भी अपने
1: आप को स्वस्थ भी बनाए और सुंदर भी बनाए।
0: बिल्कुल,
2: हर बहन चहकती रहे और उसके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनती रहे, क्योंकि पूरी गृहस्थी जो है वो हमारी बहनों के आसपास उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। कहूँ तो रीढ़ की हड्डी हैं हमारी बहनें, क्योंकि घर उनके बिना चल ही नहीं सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए समय समय पर हम नित नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं वो है योग और ध्यान से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सत्यनारायण यादव को, जो योग विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जब भी हमारी बहनों से हम योग की बात करते हैं, बहनें कहेंगी हमारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि सुबह बच्चों का काम करना है, उसके बाद में फिर खेती बाड़ी का भी काम करना है, भाई हमारे पास तो योग का समय नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि योग के लिए चाहे 20 मिनट निकालो, चाहे आधा घंटा निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ समय आपको अपने उस शरीर के लिए देना है जिसे कि आप पूरे दिन दौड़ भाग करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि योग क्या है।
3: योग आजकल बच्चा बच्चा भी जानता है, भारत सरकार ने योग दिवस के रूप में बहुत प्रचार कर दिया है। तो योग तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैरना, खेलना, टहलना सब जरूरी है, उस तरह से ऋषि मुनियों की एक ऐसी विद्या है जो अनेक प्रकार के आसन है, मुद्राएं हैं, कैसे रिलैक्स किया जाए, कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाए, तो बीमारियों से बचने का और बीमारियों से स्वस्थ रहने का एक मार्ग है योग।
2: जब हम बात करते हैं योग की तो दिमाग में यही आता है कि भाई ये इतने कठिन आसन है, हम तो नहीं कर पाएंगे, इसमें इतना समय लगेगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग की बात करें तो ऐसे वे कौन कौन से सिंपल आसन है जिन्हें की हमारी बहन करके स्वस्थ रह सकती है?
3: आजकल तो गांव-गांव में, शहर के हर जगह योग सिखाने वाले लोग हैं, तो अपने निकटतम जगह पर पूछे, उसमें कुछ आसनों का मैं नाम बताता हूँ महिलाओं के लिए। जैसे गोमुख आसन है, ताड़ आसन है, कोण आसन है, सूर्य नमस्कार है, श्वास की क्रियाओं में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अगर इतना करते हैं तो वो हमेशा पर्याप्त है। दूसरा जो आज का संदर्भ है ध्यान का,
2: जी
3: ध्यान भी जरूर करना चाहिए महिलाओं को।
2: देखिए, योग का क्या एक समय निश्चित है, या जब योग करें तो योग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान हमारी बहनें रखें?
3: मैं योग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं अपनी बहनों को कि योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ध्यान ही नहीं है। योग का मतलब गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि युक्त आहार व्याहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधश्च योगे नहि दुखा। योग का मतलब होता है समय से भोजन करना, ऋतु के अनुसार किस ऋतु में कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गांव के लोगों के लिए ईश्वर ने इतने कृपा किया है कि उनको सब्जियां हर सीजन में अलग अलग होती हैं, सीजन के अनुसार ही सब्जियां खाएं और फल खाएं, अनाज खाएं, तो जो उनके खेतों में जिस समय जो हो रहा है वो खाएं और समय से खाएं। और गांव के लोग तो अनुशासित होते ही हैं, सूर्यास्त से पहले जो भोजन कर लिया, लेकिन सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके भोजन कर लें और ऋतु के अनुसार करें, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तो वो भी एक योग है। दूसरा आचरण भी अपना अनुशासन करें, जैसे हम दूसरे के बारे में ना सोचें, दूसरे की आलोचना ना करें, वो भी एक योग है। और अपने काम को पूरा मन से पूजा समझ के, एक

0: तभी समझ के, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो चाहे महिला हो, अगर अपने काम को पूरा ध्यान से करे, एकाग्रता से करे, वो भी एक योग है।
1: यानी योग जो है वो पूरे हमारी जितनी भी दिनचर्या है उस सब में समाया हुआ है, चाहे हम सुबह उठते हैं वहां से लेकर और रात को सोते हैं वहां तक। जब बार बार महिलाओं की बात करते हैं, अगर हमारी बहनें तनावग्रस्त होती हैं या परेशान हो जाती हैं, तो दूसरी बहन उनको सलाह देती है कि ऐसा कर, तूने ध्यान कर लिया कर तो तनाव से ना मुक्ति मिल जाएगी। जब तनाव आता है तभी हम ध्यान की तरफ क्यों जाते हैं, तो ये ध्यान क्या है?
0: ध्यान कहने के लिए तो बहुत सरल है, बहुत कठिन भी नहीं है
1: जी।
0: इसको बस समझ लिया जाए, ध्यान से जैसे दादी जी भी कहती हैं अपने पोते को जब जाता है, चाहे बेटे को भी कहते हैं माता पिता, ध्यान से जाना, ध्यान से टिफिन खा लेना। तो ध्यान का मतलब कि वर्तमान में रहना, जो भी हम काम करें अगर हम वर्तमान में अगर सांस भी लेते हैं। माता पिता हम कई बार सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोना है बचपन से ही, बाल कैसे रखना है, क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि सांस कैसे लेनी है। हम अपने सांस को बैठ के कभी देखते हैं, बड़े से बड़े भी पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन जब हम बैठ के आंख बंद करके जब हम अपनी सांस को देखने लगे, हस्तक्षेप ना करें, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है, कितनी देर आने में लग रहा है, कितनी देर निकलने में लग रहा है, अगर हम एक एक सांस को केवल 5 मिनट अगर इतना कर लेते हैं ना, इससे सरल और इससे अच्छा और इससे लाभकारी कोई ध्यान नहीं है। देखेंगे ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं, जितना हम अभ्यास करेंगे उतने प्रकार के ध्यान के मार्ग अपने आप प्रशस्त होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान है कि आंख बंद करके बैठ जाए, और करने का समय क्या है, खाली पेट, नाश्ते से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, रात के भोजन से 1 घंटा पहले, जब भी आपके पास समय है, तीनों में से तीनों समय कर सकते 5-5 मिनट, एक भी समय तो जरूर करना चाहिए। तो बैठ करके सबसे पहले अपने आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि मैं कैसे बैठी हूँ, एकदम शांत मन से, उस समय सब चिंता छोड़ दीजिए, मेरा काम क्या हुआ, क्या होना है, ना पीछे जाइए ना आगे का सोचिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, हर समय जब भी हम आंख बंद करते हैं तो विचारों का जो उधेड़ बुन है वो तो चलती ही रहती है, तो उस उधेड़ बुन को सबसे पहले तो हमारी बहनों को कंट्रोल करना है, या एक आम इंसान के रूप में भी जब हम बात करें तो उसको तो हमें पहले कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी क्या कुछ पहले हमें सोचना पड़ेगा या उसका कुछ अभ्यास करना पड़ेगा?
0: कि इस फील्ड में मुझे 45 साल से ज्यादा हो गया कराते हुए, दुनिया में सब पर विजय प्राप्त की जा सकती है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती
1: जी। और जब हम मन पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं तब
0: तो ही मन, लोग कहते हैं कि मन भी तो नहीं एकाग्र होता है, शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी साणुत मापनोति तत्व वायु निरोधेत। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, न कोई दुनिया में सर्जरी है न कोई दवाई है, कि अगर श्वास को आप देखना शुरू कर दीजिए रोज रोज तो आपका मन भटकना ही बंद हो जाएगा
1: जी।
0: और करके देखिए तो जैसे जैसे मन पर विजय प्राप्त होने लगे, पहले अगर 1 मिनट में 100 जगह जाता है तो 50 बार जाएगा, फिर 25 बार जाएगा, फिर 10 बार करते करते शून्य हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा बच्चे की तरह।
1: यानी जैसे जैसे हमारी बहनें अभ्यास करेंगी तो अभ्यास के बाद जो है वो अपनी सांसों को आते जाते बिल्कुल ध्यान से देख पाएंगे, कैसे सांस जा रही है कैसे आ रही है, वो जो उधेड़ बुन उनके पहले दिमाग में रहती थी अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी,
0: खत्म हो जाएगी। और आज सारी बीमारियों का जड़, आज जितना भी तनाव है, किसी डायबिटीज है, किसी को सिर दर्द है, महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं तनाव के कारण। और तनाव को दूर करने का दुनिया में अगर कोई रास्ता है तो ये ध्यान है
1: जी,
0: प्राणायाम है। तो इस श्वास को ही अगर देखना शुरू करें, उसके बाद ये लेट के भी करें, बैठ के नहीं बैठा जाता, कई लोगों से कमर में दर्द है या कोई थका हुआ है या बीमार है, ताकत नहीं बैठने की, तो वो लेट जाए और लेट करके शरीर को ढीला छोड़ के आंख बंद करें, बंद करके भी अपने शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें
1: जी।
0: और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद उनको लगेगा कि वाकई मन शांत हुआ, और उसे केवल मन नहीं शांत होगा, सिर दर्द कब दूर हो गया, अनिद्रा की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, नकारात्मकता, और भी बीमारियां, पाचन की बीमारियां, सब धीरे धीरे केवल इससे दूर हो जाएगा
1: जी।
0: तो ये अभ्यास करें, और उसके बाद ध्यान के साथ साथ कहते हैं 3 तरह का ध्यान होना है, शरीर का ध्यान, पहले शरीर को शिथिल करिए बैठ के चल लेट के, फिर उसके बाद मन को करिए श्वास के द्वारा, इसके बाद कोई विचार नहीं आना चाहिए। जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो चप्पल को बिस्तर पर नहीं अलाउ करते, उसी तरह से बोलिए ध्यान करते समय कि मेरा समय है, विचारों को प्रणाम कीजिए नम्रता से
1: जी।
0: तो उस तरह से थॉट को, विचारों को ध्यान के समय भूलिए कि थोड़ी देर के बाद मैं मिलूंगी, सारे काम बाकी हैं, उपलब्ध प्रार्थना है, पशुओं को चारा भी देना है, खेती में भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, कुछ भी हो सकता है, बोलिए कि लेकिन ये मेरा 5 मिनट है ना, ये मेरा समय है, चाहे 15 मिनट, रोज एक टाइम अपना निकालिए, न पति के लिए, न बच्चे के लिए, न परिवार के लिए, न दुनिया के लिए, 5 से 15 मिनट अपना समय निकालिए 24 घंटे में से, और उसमें केवल प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, और रिलैक्स करके विचारों पर ध्यान कीजिए कि विचार नहीं आना चाहिए। तो उसका क्या लाभ होगा कि धीरे धीरे इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जब चाहेंगे तभी गुस्सा आएगा। तो

0: फिर गुस्सा ही नहीं आएगा, तो समझिए कि अनेक बीमारियां दूर, तनाव ही, कहते नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन, तो इससे क्या होगा, संतुष्टि का अभाव होगा ध्यान करने से। कैसे लाभ होगा स्वास्थ्य पर, कि केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तीसरा है नैतिक स्वास्थ्य, कि हम अपनी नजर में हम ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन अगर नैतिक पतन हमारा हो चुका है तो हम अपनी नजर में भी नहीं उत्थान कर पाते हैं। लेकिन ध्यान करने से, प्राणायाम करने से आत्म दृष्टि में हम ऊंचा उठते हैं, तो नैतिक उत्थान, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी धी कहते हैं विद्या को, आत्मबुद्धि को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी कमियों को हम देखने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, वो ध्यान से सबसे बड़ी बात आती है।
1: और योग और ध्यान में जब हम बात करें तो ऐसा भी कर सकते हैं हमारे कि एक दिन योग कर लें, एक दिन ध्यान, या ध्यान ज्यादा इफेक्टिव है योग के बजाय?
0: वो एक दूसरे का भाग है, जैसे भोजन है, सब्जी का अलग भूमिका है, रोटी की अलग भूमिका है, फल की अलग है, तो अगर हम आसन करके अध्ययन करें तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे गांव के लोग की भाषा में दही को जब मथते हैं, दूध को जब खूब मथते हैं तब घी बिना मथे जो है बाहर नहीं आएगा। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है, तो शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, तो शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, गंदगियां हैं, वो इकट्ठे हो जाती हैं, तब उसको फेफड़ा को निकाल के बाहर करने में, किडनी को निकाल के यूरिन से बाहर निकालने में आसानी हो जाती है। अगर नहीं हम करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं तो भी निकलेगा, लेकिन अगर आसन की बात करें तो ज्यादा लाभ होगा।
1: तो मैं तो यही सलाह दूंगी अपने बहनों को कि अपने स्वास्थ्य का भी उनको बहुत ही ध्यान रखना है, योग और ध्यान से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी बहनों को इतनी अच्छी और उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारी बहनों ने बातचीत सुनी योग और प्राकृतिक ध्यान से कैसे आप महिलाएं अपना समग्र स्वास्थ्य बना सकती हैं, और उन्हें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सत्यनारायण यादव और बातचीत कर रही थी हमारी बहन कमलेश मुदगल। तो चलो अब हम अपनी बहनों को एक अच्छा गीत सुनवाते कि भाई
3: हाँ, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि भाई योग से क्या क्या फायदे हो जाते हैं।
2: फायदे भी होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर खूबसूरती होती है तो अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो मन में अच्छा भी लगता है।

0: तो हम आज जो श्रोता है वो सुन रहे हैं, जैसे कि कार्यक्रम आप जानते ही हैं गृहलक्ष्मी, और हम बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, बहुत सारे खास मुद्दों पे बातें भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, खास बातें भी बताते हैं, और उसके साथ हम बताएंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान बहनों के लिए बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं, जैसे कि हमारा ऑयल सीड्स किसान मित्र, इसके जरिए एक वर्चुअल कृषि विस्तार से होगी, एक ये विकसित योजना कह लो, उसका उद्देश्य क्या है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और किसान समुदाय के बीच की जो दूरी होती है ना, उनको कम करना, एक स्मार्ट खेती की जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी सलाह उन्हें मोबाइल के जरिए तुरंत उपलब्ध हो जाए, और इसका उद्देश्य ही यही है कि उन किसानों की जो उनकी जो सरल भाषा है उसमें समय पर और उपयोगी कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो बेहतर और तरीके से, और वैज्ञानिक खेती को कैसे बढ़ावा मिले उनको अच्छे से मिल पाए।
1: बिल्कुल, और देखो इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जैसे अभी हमने बताया कि जो ये जो ग्रामीण बहनें हैं हमारी, हर तरह से खेती के लिए भी अच्छी तरह से जानकारी ले सकती हैं, उसी तरह से जो हमारी भारतीय ग्रामीण बहनें हैं उनका खेलों में भी दबदबा इतना रहा है कि नकारा नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: अब जहां तक देखो खेल की मिट्टी में, जब गांव की मिट्टी में हमारी बहनें खेलती हैं ना, तो एक अलग ही हुनर और रंग निखर कर आता है, और उसके बाद फिर जिस तरह से वो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं उसका तो कहना ही क्या।
0: और अभी जैसे चल रहा है ये जापान के आईची नागोया में चल रही है एशियन गेम्स, है ना, उसमें भी हमारी जो भारतीय महिलाएं उनकी खास भूमिका रही है, और उन्होंने ऐसे इतिहास रच दिया है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसको एक कहते हैं ना कि उस पर प्रेरित हो रही है।
1: बिल्कुल, देखो रेनू जो एशियाड है, अभी हमारी जो महिला क्रिकेट टीम ने एशियन खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिला, एक बहुत बड़ी बात होती है, और हमारी बेटियों के लिए भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उस बात के लिए भी देखो बेटी बचाओगे तभी
0: तो बेटी नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ माता पिता ही नाम रोशन ही करते हैं, देखो पूरे देश का नाम रोशन होता है, तो जैसे हमारी क्रिकेट में हो, कबड्डी में हो, या शूटिंग में हो, या कहीं हमारे किसी भी एथलीट की बात की जाए, तो बहुत सी महिलाएं जिन्होंने अपना योगदान दिया।
1: बिल्कुल, देखो जैसे मीराबाई चानू, हरमनप्रीत कौर, वर्णिका एलंगोवन, और भारतीय एथलीट में सुचिका तरियाल, और इसी तरह से राइजा ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान, परिणाश थालीवाल, सीमा कुमारी, इन सभी जो बेटियां हैं हमारी, हमारे अपने परिवार का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, और इसके साथ साथ विश्व में भारत की खेलों के जो दृष्टिकोण से एक नई पहचान बनाई है।
0: इसलिए कहते हैं हर जगह जो हमारे जो मैदान है वो फतेह करके आती है।

0: तो भाई हमारे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें जानकारी तो मिल ही रही है, और हर बार उनको ये भी पता है, हमारे श्रोता बहुत ही समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि महीने के जो आखिरी रविवार होता है उसमें होती है मन की बात, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सी बातों को संकेत बताते हैं, और जिसमें कि आज उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर जो हमारा ध्यान आकर्षित किया वो है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए भारतीय सैनिकों की बहादुरी की सराहना की।
1: बिल्कुल, और देखो इसके साथ ही रीनू उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज हमसे साझा की है, जनगणना की। हम सभी जानते हैं तो उन्होंने बताई है कि सब लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त रहते हुए भी डिजिटल तरीके से भी पोर्टल पर अपनी जानकारी साझा की जा सकती है, और इसके लिए जो इस तरफ आगे बढ़ते हैं वो उनके बारे में बताते भी हैं। जैसे हरदेव राणा जी के बारे में उन्होंने बताया कि भाई जो सभी लोग हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारा कर्तव्य बनता है, और अगर हम जनगणना पोर्टल पर समय से अपनी जानकारी साझा कर देंगे तो हम सभी के लिए भी ये अच्छी बात होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी हमारे हितकर की ही बातें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पर जो निर्णायक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ साथ खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से उन्होंने नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के बारे में भी बताया कि जो हमारे युवा हैं जब वो नशे को छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारा देश है वो अपने आप ही विकसित होगा और आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जब इंसान नशा करता है तो उस समय उसे कुछ नहीं सोचता, वहीं नशा मुक्त होने पर हर इंसान अपने तरीके से रचनात्मक बातों को जान सकता है, सोच सकता है।
0: बिल्कुल, और इसी बात पर हम कहते हैं ना कि नागरिकों की सराहना की, जहां जहां स्वच्छता को लेकर और पर्यावरण को लेकर एक विकास हुआ है, जहां चेतना उजागर हुई है कह लो, तो मतलब स्वच्छता तो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर स्वच्छ रहेंगे, आसपास हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ भी रहेगा।
1: बिल्कुल, और इनो इसके साथ साथ उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर भी बल दिया, जो कि जो हमारी बहनें ही कार्यक्रम सुन रही हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझेंगी, क्योंकि जो हमारे माननीय मोदी जी हैं वो बहनों की सराहना भी करते हैं जब वो छोटे छोटे मतलब कामों से अपने उद्योग को

0: बढ़ावा देती हैं और कुछ ना कुछ राशि अपने घर के लिए लेकर आती हैं। तो देखो परिवार में भी एक तरह से वो मिलता है सहयोग, और इसके साथ साथ जो हमारा देश है वो भी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आगे
1: बढ़ता है। और इसी तरह से कुपोषण मुक्त भारत की जो पहल है वो होनी चाहिए, तो इस पर भी जोर दिया है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से उन्होंने जो हमारे देश में उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे अभी अभी हम गणपति उत्सव मना कर चुके हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो सारे उत्सव हैं और देश को बढ़ाने के लिए जो जो कार्य किए जा रहे हैं वो एक तरह से सब में एकजुटता और अनुशासन भी लेकर
1: आते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से मन की बात में बहुत सारी जानकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें किसी बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया, और इसी पर हम सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: और वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों के लिए कोई ना कोई ऐसी वीरांगना अवश्य लेकर आते हैं जो कि प्रेरणा देती है और साथ साथ ही कुछ ना कुछ हमें भी करने के लिए प्रेरित
1: करते हैं। बिल्कुल।
0: तो रेणु, आज हम अपनी बहनों के लिए ऐसी ही एक प्रेरणा जो वीरांगना है वो लेकर आए हैं। और ये जो वीरांगना है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारतीय नहीं थी। मगर भारतीय ना होकर भी पूरी तरह से भारतीयता के रंग में ढल गई।
1: बिल्कुल।
0: ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गहरा संदेश है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है रेणु, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं कि जो विदेशी लोग होते हैं वो भी जब यहाँ आ जाते हैं तो उसके रंग में ऐसे ढल जाते हैं।

0: हैं कि पूरी तरह से वो भारतीयता को ही अपना लेते हैं। और
1: बिल्कुल,
0: हमारी बहनें समझ ही गई होंगी,
1: तो आज
0: हम
1: किसको लेकर आए
0: बिल्कुल आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर एनी बेसेंट को। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी और जो इनका दिल था वो पूरी तरह से भारतीय था। एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और महिला अधिकारों की समर्थक और उसके साथ साथ हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही प्रमुख नेता रही।
1: बिल्कुल, और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में इंग्लैंड में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ हुआ जन्म, लेकिन फिर भी जो भावनाएं हैं हमारे भारत से, हमारे भारत की मिट्टी से जुड़ी। और 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे धार्मिक राजनीतिक मतभेदों के कारण उनका अलगाव भी हो गया। और ब्रिटेन में सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किया। अलगाव के बाद भी ब्रिटेन में विचार की स्वतंत्रता थी, महिला अधिकार था, जन्म नियंत्रण था, तो उस पर भी उन्होंने एक प्रखर वक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया।
0: और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। तो जो हमारी बहनें हैं इनसे शिक्षा ले सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो शिक्षा है और जो अपने समाज के लिए कार्य करना है वो हर महिला के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महिला की प्रगति के लिए भी ये
1: बहुत जरूरी है। और कहा ये जब इन्होंने भारत आई तो उनके थे ना होम रूल लीग आंदोलन, उनमें उन्होंने उनकी शुरुआत की और कांग्रेस की अध्यक्षता, कहते हैं कि उनके राष्ट्रवादी कार्यों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नजरबंद भी नहीं किया गया और उनकी लोकप्रियता देखते हुए उन्हें कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया गया।
0: तो देखो हम अपनी बहनों को यही कहेंगे कि जो ऐसी महान प्रेरणा व्यक्तित्व रही वो उनको हम शत शत नमन
1: करते हैं,
0: साथ ही प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी उनके जो दिखाए पदचिन्ह थे उन पर चलना चाहिए।

0: तो समय की घड़ी कह रही है कि हमें जाना होगा, लेकिन हम बता दें कि हमारे जो श्रोता हैं वो शाम को कृषि से संबंधित प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे तो सुनेंगे। 5:10 पर लोक रंजनी रहेगा, 6:30 सुन सकेंगे ग्राम संसार, और 7:05 पर होगा कृषि जगत। और इसी के कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप बहुमूल्य सुझाव हमें इस पते पर दे सकते हैं। पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001। और हमें ईमेल के जरिए भी आप हमें जुड़ सकते हैं, feedback@fnh.gmail.com।
1: देखो मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन घड़ी की सो इशारा कर रही है कि अब हम अपनी बहनों को बोलें कि आज का हमारा यह गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम के हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल। और इसी के साथ बहनों, राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा

0: बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and the families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD, it still stands grandly symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation by Alauddin Khilji, emphasizing that Indians view the sun as

0: the source of light, energy, science, and continuity rather than just an architectural deity, the PM shared that Modera has evolved into the country's first Surya Gram solar village, running entirely on solar energy as a model of sustainability. Inviting people to witness this heritage, the Prime Minister also highlighted the Modera Dance Festival, which showcases India's classical dances every January following Makar Sankranti. The Prime Minister also mentioned Mahatma Gandhi's birth anniversary, which will be celebrated on the 2nd of October. He said cleanliness is one of the many guiding principles for life given by Bapu. Mr. Modi cited several examples of initiatives to maintain cleanliness by young people across the country. Concluding his address, Mr. Modi urged listeners to keep sharing inspiring stories. He added that learning about these efforts through Mann Ki Baat inspires people in other parts of the country as well. Defence Minister Rajnath Singh said that India is building capabilities, keeping in mind the nature of warfare over the next 10, 20 and 25 years as it moves towards creating self-reliant and future-oriented defence ecosystem. He made these remarks while speaking at an event today organised by Media House in New Delhi. Mr. Singh emphasized that the country should not merely focus on importing technology, but should strive to define and develop defense technologies. In Nepal, 10 people are missing after an avalanche struck the base camp of Himlung Himal in western part of the country near the Tibet border, said an expedition organizer today. Weather system over the Bay of Bengal has brought heavy snow to the mountains and persistent rain to Nepal's hills and plains, prompting tourism authorities to urge trackers and climbers to suspend activities. In men's cricket, first one international, the three-match series between India and West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram at 2 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. दोपहर के 1:10 और 17 सेकंड हुए हैं. आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इसर और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपके अपने पसंदीदा चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस एक ही फिल्म से कार्यक्रम में. दोस्तों, हिंदी सिनेमा की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सिर्फ पर्दे पे नहीं चलती बल्कि हमारे मन में भी अपना एक संसार बना लेती हैं. कभी कोई कहानी प्रेम की मिठास लेकर आती है, कभी रिश्तों की कसौटी बन जाती है और कभी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्चा साथ आखिर किसे कहते हैं. आज की हमारी फिल्म भी कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई है. आज की हमारी फिल्म है साल 1966 में बनी फिल्म सगाई. इस फिल्म के निर्देशक थे एसडी नारंग, कहानी लिखी थी जेड हुसैन ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे विश्वजीत, राजश्री और प्रेम चोपड़ा. फिल्म का संगीत दिया था उस दौर के लोकप्रिय संगीतकार रवि ने, जबकि गीत लिखे थे मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने. तो आइए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी. फिल्म की कहानी शुरू होती है शील से. शील का किरदार निभाया है खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री राजश्री ने. शील एक संस्कारी परिवार की लड़की है. उसके पिता राय साहब रघु प्रसाद अपनी बेटी की शादी कैलाश से तय कर देते हैं. कैलाश का किरदार निभाया है प्रेम चोपड़ा ने. दोस्तों, जिंदगी में कई बार जो हम सोचते हैं वो नहीं होता. शील की मुलाकात होती है राजेश से. राजेश की भूमिका में है विश्वजीत. तो आगे क्या होता है आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद. उससे पहले सुन लेते हैं फिल्म सगाई का एक खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने.

प्यारे से गीत के बाद फिल्म सगाई की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे शील और राजेश एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके बीच प्रेम का रिश्ता बन जाता है। शील कैलाश से शादी नहीं करना चाहती, वो राजेश से शादी करना चाहती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां परिवार की इच्छा और दिल की इच्छा आमने सामने खड़ी दिखाई देती है, और फिर आता है शील का जन्मदिन और इस

मौके पर शील और राजेश अपनी सगाई का जश्न मनाते हैं। आगे क्या हुआ ये जानेंगे इस खूबसूरत से गीत के बाद।

पापे ना शर्मा इस खूबसूरत गीत के बाद अब वापस लौटते हैं फिल्म सगाई की कहानी की ओर। राजेश और शील की सगाई को कैलाश स्वीकार नहीं कर पाता। उसके मन में राजेश के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट एक साजिश थी राजेश के खिलाफ। इस एक्सीडेंट में राजेश कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो जाता है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ एक युवा प्रेमी जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई, दूसरी तरफ एक लड़की जिसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने प्रेमी का साथ देगी? शील के पिता इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन शील ने राजेश का साथ नहीं छोड़ा। शील ने राजेश के साथ विवाह कर लिया। यहाँ फिल्म का शीर्षक सगाई जैसे एक नए अर्थ में बदल जाता है। सगाई सिर्फ दो लोगों के बीच किया गया वादा नहीं रह जाती, वो जीवन भर साथ निभाने के संकल्प में बदल जाती है। फिल्म की कहानी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर से सावधान
0: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के एक ही फिल्म से प्रोग्राम में और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ और आज आप सुन रहे हैं फिल्म सगाई की कहानी के साथ साथ उसके नगमे भी तो आइए सुनते हैं एक और भावनात्मक गीत फिल्म सगाई से

दोस्तों, इस भावनात्मक गीत के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शादी के बाद शील अपने लकवा ग्रस्त पति की सेवा में लग जाती है और अपने पति को फिर से जीवन के प्रति विश्वास दिलाने की कोशिश करती है। यहाँ फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं रह जाती, एक ऐसी स्त्री की कहानी बन जाती है जो कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानती। कहानी का भावनात्मक केंद्र यही है कि जब जीवन आसान नहीं रहता, तब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। राजेश के लिए शील का साथ सिर्फ प्रेम नहीं है, वो अब उसके जीवन का सहारा बन जाती है। तो ये थी फिल्म सगाई की कहानी संक्षेप में। तो अभी हमारे दोस्तों को बहुत बेसब्री से इंतजार होगा अपने संदेशों का, तो अभी हम अपने दोस्तों के संदेश शामिल कर लेते हैं। तो पहला संदेश हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम दिशानी और निमित अहुजा ने हमें ये संदेश भेजा है। इन्होंने लिखा है, एक ही फिल्म सगाई की कहानी और गीत सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, आपकी प्रस्तुति भी लाजवाब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, और इनके साथ हैं, अगला मेल है हमें झग्गर राम साहू, ये हमें मेल भेजा है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और अगला संदेश है संजय धिंगिया जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इनको पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये संदेश हमें मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से। तो अगला संदेश हम शामिल कर रहे हैं फारूक अली जी का, इनको भी हमारा प्रोग्राम एक ही फिल्म से आज पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है पीएस नावकर जी का, ये संदेश इन्होंने भेजा है नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके साथ हैं नावकर परिवार के सभी सदस्य, इनको भी आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं सुदर्शन मुखी जी का, ये मेल हमें, इनके साथ है अनीता सिमरन, ये मेल हमें मिला है शांति नगर सोनीपत से, इनको भी आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, एक ही फिल्म से कार्यक्रम का ये आनंद उठा रहे हैं और फिल्म के गीत भी इन्हें पसंद आ रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगला मेल है हीरा मणि वर्मा जी का, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है आज फिल्म सगाई, फिल्म से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ फिल्म के बेहतरीन गीत सुनने को मिल रहे हैं, यादगार प्रस्तुति के लिए बधाई। तो आपका भी हीरामणि जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है दंत रेगी भट्टापारा से। और एक और मेल मैं शामिल करना चाहूंगी रोजी डी कॉस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से, इन्होंने ये मेल हमें भेजा है और ये हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत ही आनंद के साथ सुन रहे हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और एक और मेल शामिल करूंगी मैं कमलकांत गुप्ता जी ने, ये मेल भेजा है पीपरिया से, और इनके साथ है दीपा गुप्ता और छिप्पा गुप्ता। तो इसी तरह से हमें अपने संदेशों के जरिए अपना प्रेम जाहिर करते रहिए और प्रोग्राम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया भी हमें भेजते रहिए। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो नए श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ईमेल पता मैं बताना चाहूंगी, ip radio delhi@gmail.com

sagai@gmail.com। तो दोस्तों, फिल्म सगाई में कई अनुभवी कलाकार भी दिखाई देते हैं। राज मेहरा शील के पिता की भूमिका में है, दुर्गा खोटे शील की माँ के रूप में, असित सेन टुनटुन इफ्तिकार अस्पताल की डॉक्टर की भूमिका में और हेलन डांसर के रूप में दिखाई देती हैं। इन कलाकारों ने फिल्म की कहानी को अलग अलग रंग दिए। दोस्तों, फिल्म की एक खास बात है शील का विष कन्या के रूप में किया गया नृत्य। ये दृश्य फिल्म की कहानी में आने वाले तूफान से पहले का एक अलग रंग प्रस्तुत करता है। राजश्री का नृत्य और उस समय की सिनेमाई प्रस्तुति हमें उस दौर की फिल्मों की शैली की याद दिलाती है। दोस्तों, फिल्म सगाई की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिश्ते सिर्फ खुशियों के साथ रहने से नहीं बनते, रिश्ते तो मुश्किल समय में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं होती, मुश्किल घड़ी में जो साथ थामे वही तो सच्ची सगाई होती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म सगाई का एक और प्यारा सा गीत।

तो फिल्म सगाई की कहानी में एक और बात आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी कि टुनटुन ने मिस अनारकली की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में, यानी फिल्म में गंभीर प्रेम कहानी के साथ हल्के फुल्के हास्य का भी रंग मौजूद था। तो इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और फिल्म की कहानी के साथ, और

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारतीय फौज वलों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्द विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। प्रधानमंत्री वलों नौजवानां नूं नशा मुक्त युवा मुहिम दा हिस्सा बनन दी अपील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत भविख विच जंग दी प्रकृति दी नूं ध्यान च रखते हुए अपनियां समर्थावां दा विकास कर रहा है। अज विश्व सैर सपाटा दिवस मनाया जा रहा है ते भारत ते वैस्ट इंडीज दरमियान 3 एक रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी अज तो शुरू। पहला मैच अज दोपहर बाद 2 बजे तिरुवनंतपुरम च खेडिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फौज वलों पाकिस्तान च दहशतगर्दी टिकाणियां ते कीती गई सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया दे सामने भारत दी दहशतगर्दी विरोधी नीति दी एक नवी मिसाल पेश कीती है। आज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि देश कल 28 सितंबर नूं इस स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देख के हैरान है कि किवें बहादुर भारतीय जवानों ने दहशतगर्दी खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने लई कंट्रोल रेखा पार की। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय तो दहशतगर्दी हमलों तो पीड़ित सी अते सर्जिकल स्ट्राइक इसका फैसला कुन जवाब सी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके दौरान बालाकोट हवाई हमले तो लैके ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने वार वार यह संदेश दिता है कि दहशतगर्दी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिता जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 11 सितंबर नूं अमरीका च वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ते हुई दहशतगर्दी हमले की 25वीं बरसी है। मर्दमशुमारी बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पहला गेड़ करीब सारे राज्यों च पूरा हो गया ते 32 करोड़ तो वध परिवारों का डेटा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि इस समय लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ते उत्तराखंड के दूर दुराडे ते बर्फ नाल ढके खेतरां च काम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना हर किसी की राष्ट्रीय जिम्मेवारी है ते लोग अपने मोबाइल फोन की वरतों करके अपनी ते अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते ने।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए

0: अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: ਹੁਣ ਤੱਕ 2,60,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ

0: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ 3-1 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दमशुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मर्दमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मर्दमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार

0: परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी, जिसे वो मर्दुमशुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां योम पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशा आवर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
0: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मर्तबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने भाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहें। वजीर आजम ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने ये उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
2: आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
1: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवीत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को अज़रेनो वज़ा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनूई ज़हानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तायुन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले हुए हैं। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नज़र उठाया गया है। पाकिस्तान में शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूज सलीमोव को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से हरा दिया। इस तरह बॉक्सिंग में भारत को पहला तमगा मिलना तय है। अंकुश पहली मर्तबा एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 1 रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद 2 बजे शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2 महीने के वक्फे के बाद भारत की 1 रोजा क्रिकेट मैचों की टीम में वापस आ गए हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे।

0: जबकि शाई होप वेस्ट इंडीज के कप्तान हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दों शुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukt Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG-powered train at Sabarmati. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, boxer Ankush Pangal assures medal by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80-kilogram quarterfinal. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow, that is 28th of September. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Prime Minister Modi said this year also marks 25 years since the 9/11 terrorist attacks. He said the highest number of victims at the World Trade Center, the US, after Americans were Indians. He recalled paying homage to those innocent citizens during his US visit after becoming Prime Minister in 2014. He once again extended his condolences to the bereaved families on behalf of crores of Indian citizens. Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said, the first phase of this exercise is nearly complete across all states and union territories. Data of over 32 crore families has already been recorded. Work is currently underway also in the remote, snow-clad regions of Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand. The Prime Minister noted that many inspiring experiences have emerged from these areas. In Uttarakhand, the census process began in the village of Mana in Chamoli, which is known as the country's first village.
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें।

0: 15 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh, red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's singles. Squash boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
2: 1026

0: ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक

0: विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
2: हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएससीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनेक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
1: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रूपये का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

0: में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: দশ ছ পঁয়ত্রিশ আকাশবাণী দিল্লী নেশনেল নিউজ সার্ভিস 24x7 নিকা খবরনগিন নিউপিন মিডিমিকা দিও আকাশবাণী কারগিলেন কসতা প্রোগ্রাম ইন মজত সিনা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম ফুচুকান পয়েন্ট মোহাম্মদ রাজা আমজিদ ইয়ং প্রোগ্রামি প্রডিউসার পয়েন্ট গুলজার হুসেন

Shakar Sajaru, Ajuko program maja desgao shiri chaga murik thone se nala nala ek manaj ke ga saath murik ka lekhte chhoda khairo ke be su koshish ton to ne maja khen mut to ka sida ga par jaro ke chamat bhi silate sajaru membudo re lelhani ki ashpuri sarpalo ke maja duniya te maja alami yom me बेहरापन कने से उर्दे थे ना बेसु यानी कूट ने पर जन जा को देश वर्ल्ड डीफ डे कने से अंग्रेजी थे ना पूरी दुनिया ते जाश मान्यो हने रशु हने सरसारु आलमी यो में श्रीने बेसु राजेश तो ने पर जन जा को देश अनुदेश सताव दे जो बिल की अनुदेश उच्चक दिश दिशु मरके का सिंह से सने अनिनोर एन अबशो बारा है मुश्किल बनो अनुदेश कुन की पर योनी सलाया जो हाथ गुज हने जाको अभशे जो खने असनो समाज में जा रेनोर जेक जेक मसाइल मुछो है ना रेने हुकू को बारार दश गिनो नी यानी रेना जानकारी गिनो नी कार्यो अन्य सिंहसे का मर के हर दिशु कोते सन्यो हने पूरी सरपलोग जा दुनिया तिजा टकेस तो अनि जेलो जग से हुर हुरे अवश्य मसलन तालीमी रोजगार और तने सेहती मुश्किल तो मजा रे सची बहन है अनु दो अनुदेश रची अनि दश जो नी चमार थे ना कि कूट हाँ जग या कुटिया हाँ निकने पर जन जा कोरे एन अवश्य भी सु लांग थियो निकारियो एके आम जग से रेनो जोग जोग में सु मदद थियो बोनस अनिवार्य रेगा दश दे भोजने जानकारी दे भोजने रनई सलाहियत या काबिलियत तोलोनी ने बिलदारू अनि देश अनुदेश मनोनी मकसद की रनई कचा के सलाहियत है अनि ने परजन जको या रे काबिल हां दनिश अनि तोलोनी अन्य पैमाइश छोनु ने बिल बल्कि रनुर एन अवशे समाज जा रे जोग जोग अवशे मजा सचने आबा रहेगा अनि देजो वसातत की जकोरे दर्श देना बोदे बोदे कूट जक से ने परजन जक से का तालीमी मैदान जा खेलो मजा साइंसी मैदान जा तुमनी तुमनी दर्श का काबिलियत के हुनर की नोम क्रमे गाने अश्मिसु अगर तारीख हते की टकेस तो लेल बेने जारू कि कौन की ने पर जन जग का साइंसो मैदान जा बड़े उथाल क्रोमी थे गाने डॉक्टरी का दुले गाने समाजो एके मुते मैदान हो जा रनो जा तुम नोम खने खले गाने तो ने आज गया अनेक समझक से अनि ने परजन जक से तुम्ही ने सलाह है तो पशरियों हने समाज की खिदमत थियो हने सरजारू बेसु आवाजी कि अनि जेलो जको अशाते ने दस्ते रेनोजा हनि दस रेनोजा हनि एलुम हुनर सुजोन थे रेनोर का आम जको

बतौरें बेस मिसाल की नुंजु असनी कर की तो को थो चागा था कि न्याली कोर्टो बारे था न्याली कोर्टो बारे अगर तारीख टकलो तो अनिसे शिलोग पतो अनिसे तारीख पड़ो पतो बड़ो एक मुआशरा को पता देनो बड़ो मुआशरा को जको तर्ज जिंदगी कना थे अकनो देश खाले न रहे जमींदारी जो थे ना रेनो मुआशरती निजाम जो कसिलो रने बुनियोनी खोन जो कसिली अन्य बुरी तारीख हो रहे किताब ठेकेले सो अने सो पता भी नहीं जो आ कोटो को देगा तू अजा फोई बे आओ कोटे जा ठीक करके बड़गाम में मुशनी हनु रेसे लोकेशन का तय प्राइज है कि आज आजा खजन तो पूरा करके मुठो में निवाजो बुढ़ी तो कोते गे से आसार सची हने कुट आधे 3 फुट 4 फुट को हिसाब में जो कुछ जामाने जा

0: ऑफिस नला शोगुल छोरेन शोक छोरेन जाक एक दौर पता है आसू बार रहे तो आने से या छो फर्स मुत केगा सने शुदारी हाँ बाल हाँ मुलाय हैं को तो बुरे तालीम दश गिनी हने तालीम सिर्ष गिनी हने से बुरे मुठोई था तो आने एक्सप्लोर थी तो थने उठो को तो रजा हिसाब पे जा को तो सोशल मीडिया दौर हनो मीडिया जा अपलोड थोने सुनने आ सोचे तो से अपलोड था आ वीडियो आ फोटो दुनिया तेरे कोनो कोने दिशे फेनो तब जाके अनसो डिस्क्रिप्शन एक लिखे हुए तो दरे ने टूरिस्ट जो है अन से कौन है थे ट्रक है उड़ रहे हो ना तो उड़ रहे आले तो मैं जरे सर गाय टेका हो जी गाय टेका हो जी तो गाय टेको का रोजगार बिलो एक मिनट को रोजगार बतौर गाइड बिलो सदो से आले ग्रुप हो शकले वजह या एक डूबो का वजह तो सेनोर होम सिटे अगर थे तो आधे होम सिटे सद अगर रोजगार हो एक जरिया बहनो तो लियाकत भाई जरूरत है कि मनुष्य से नीशुए तो जरूरी है हाँ तुरे नाव मोटे मुझे राजम जो तुझे का पता है कि तो थे तालुक का देख करके तो बिल अनु फील है जब मुझे क्रोमबास का उठानो तो आज से हमारे कोनो कोने जो है पता है गांव कला परुको साल बिल जो एक दो बरस बिल अनि टूरिस्ट को आते चेक मुशाक से चीज दो जैसे उड़ो रहना ले तहकीक छोड़ने वाले ले एक तो असल आने शामानी जमो बारे है दाल कने से मैं दाल बोने थोड़े से तो अगर अने दाल बोने बारे में ट्रक तो असने अनु श्रीनालो को जाकर है जानकारी अने शामानी जमे बारे वही कैसे उन के आओ असनो कबल अज इस्लाम कबूल ने जिसे मुशुन असनो मजहब शतनो कोते का सने जा रहे हाँ माफे रहा सेनो रहने दालो बारे दाल से जोग जोग हरकते थे ना रे अने वजह दे या कना बोए ना हाँ बुढ़े पता है तो मुहक्की नोरे बहन की एक जरिया गमोना से और रेगी अने आले टूरिस्ट या सोई थी एक रोजगार हो जरिया बने असनो कोलो डर हूँ जो आधे कर किता है पर कोलो डर आ ट्रके सादे आ कोरो जा मैं जो कुछ जमानो आप टेलीग्राफी सने कन्नोर में सने किशे हुई लिखे हने नक्शे प्रे हाँ तो आधे एक मुहक्की को वही तो दुराजो भाई अनु मुसुरे से खोजन था अनु थे सीसा पे तो आने से क्रम था नो अने पेटोग्राफिस लद्दाख जाने के बताए हने आने से अने नो जेक मुशाबे हाँ था अने का सेम बिल्ला है तो रे तो हम ये पहली बार पाची बिल पूरा तिब्बत है अनु निश लद्दाख है निश अनु गिलगितो शत्याल ले जा शत्याल तो दिश के जाएं सेगा अने सेम बिल तो असमें तो पता भी नहीं कि असने इब्तिदाई वत या श्रीन जाक वत अले सेनो क्रम बिलानु थे का क्रम आदे लिखे एक सेनो क्रम बिल तो आए फर वो जो टूरिस्ट फाल है टूरिस्ट फोन तो सेनो पाशेरों ने जाक दो तो आवाज़ हाँ दो औरे रोजगार बिल उन्हें जरिया तो आए फर वो मुझे दिशे हैं जो तो तू थानी हिसाब पे लिया कर भाई तू से जो थे सजेशन जो खाने के ना ही तब करे जो छोना हो जाना सही ना हो तब कर
1: ये जो है ना हो तब का भेस पशियों उन हंस कि आज सोशल मीडिया का भी घेमो जी मुलाविज बहुत ज्यादातर वहीं आज से जगह आगे के हाँ कि बाल ड्रग एडिक्शन हुई की हाँ डिफरेंट टाइप ड्रग एडिक्शन हुई की हाँ तो आज सोई थी कि यंग तब के वही तब तो भेस अगर एजुकेशन आगे परस्यू हो वो उन्हें बलेस तो अन्य चीज वही टूरिस्ट गाइड फ्री या बिजनेस पर्सन फ्री अगर बे मुछो आलिस तो एक टूरिस्ट वालों में अट्रैक्ट होने वार है सुन के क्योंकि स्किल्स आज बुढ़ पता है स्किल्स एक लैंग्वेज स्किल अगर पता है जो तो टूरिस्टो गाइड थे खाली होना से जरूरी कनुष की साथ सुन की पूरा इंग्लिश होनी जरूरी कनुष साथ बेंस एक ट्रांसलेशन जेक थे तो बेंसु सुनो अट्रैक्ट हरी गामाड़क फायरी अगर असुए कोशिश थी तो असनी हर चीज भी आगे बजो ना खासकर फाइनेंशियली तो आई कनू गबाली या मुलायो कदम गिने तो रहेंगा आगे बजो ना वही सोसाइटी का आगे बजो नहीं है जाए
0: तो सोच रहे जा लियाकत भाई कि जवान तबका सोईने भी होनो निश्री भी होनो तो आता आता है दिशा है कि एक्सप्लोर थे होनो कोते बेंसु मिसाल हो कार्यो सिर्फ करकित सनिश करकित तो मिसाल है सोईने करकित एक चूनो गांव के जानी चूनी वादी के जही अचाक आसारे कदिमा हाँ कनिसो असमिति अंदाजा थे होनो का मुश्किल हो आई लिखो तो थो दलील था ऐसी से बराबर जो पारिखिंग त्रांफे ऐसा त्रांफे ऐसेगा बेचुन हाँस खुनी असुए पशांस साधे सेस होगा आसार कुट दूध फुट टू फुट खजिया सिली अब कनु खेने के जहरियां जोक पता सा तो बोजी बोजी तो सो जमाने जा हरी लग बिल अगर आओगा सोई जा से खुने असने अनि माफे रजार खोर रानी सो बारे अहमियत पता असिल तो रेसे गाने से तहफुजे कार्यो कदम गिनन बिल मार सेनो रेसे खुने अनि सो जानकारी ने बोई में से हुन तालीम का चाक ना असिली तो कोते आसार कदिमो अगर मोस्ट तो यहाँ लिकोट जरा त्रांफे ऐसे जो आए पेट्रोग्राफ सारा दो कोलो डर हो आए फिर वो अगर शामानिज्म मजहबो अगर तहकीक थे न कोरा बेसो अगर सेनो हाथ पालो थे तो

0: तो इंशाल्लाह झील दो दमोन से अगर झील छोड़ो तो बड़ा लाख पूर्ण रोगाणु गुणी छोड़क ओके चमाट बे सदड़क मोर दिया इजाजत खुदा यार।
1: तसंच आपण तेच प्रोग्राम युनिट पिन शिना प्रोग्राम पुनर मेडिमेका जो आकाशवाणी करगिरी कसता आकाशवाणी दिल्ली कना उर्दू सर्विस प्रोग्राम रिलेबित रिलेला ढंग भाषा।

सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामने आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें निश्चित की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब नफीस सिद्दीकी का तहरीर करता ड्रामा जिंदगी जिंदगी। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, जिनमें अगले 20 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। रूस ने अकवामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और केप टाउन में गोलीबारी के दो अलग अलग वाकयात में 27 अफराद हलाक हो गए। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में चांदी के दो तमगे जीते हैं। अंकुश पंघाल ने मुक्केबाजी में एक तमगा यकीनी बना लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निपटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था, दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई थी। वजीर आजम ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वजीर आजम बनने के बाद अमेरिका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तذکرہ भी किया। मौजूदा मरदमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों का डाटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मरदमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं। जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी जिसे वो मरदमशुमारी करने वाले एन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां यौमे पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशावर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समंदर के किनारे अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने बाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहें।

वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निजाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10-20-25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौइयत को मलहूज खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। जनाब राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि मुल्क को सिर्फ तकनीक दरामद करने पर ही तवज्जो मरकूज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे दिफाई टेक्नोलॉजियां तैयार करने और उन्हें जदीद तर्ज पर ढालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि जदीद तर्ज की जंग अब मुसल्ला अफवाज या हथियारों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये कसीर जहती बन गई है। दिफाई शोबे की तरक्की को उजागर करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में मुल्क की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है और कौमी सलामती को मुस्तहकम बनाने के ताल्लुक से उसकी हिकमत अमली में भी बड़ी तब्दीली आई है। फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने फौजी सलाहियत को बरकरार रखने और इसमें नई जान डालने की सलाहियत के ताल्लुक से दिफाई सामान की तैयारी में खुद किफालत से आगे बढ़कर दिफाई तैयारियों पर जोर दिया है। वो एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम डिफेंस कॉन्क्लेव में नई नौइयत की जंग के दौर में आत्मनिर्भरता के मौजू पर कलीदी खिताब कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मजीद नशस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन हैं। जनूबी अफ्रीका के दो सबसे बड़े शहरों में गोलीबारी के अलग अलग वाकयात में कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने आज बताया कि कल रात 17 लोग उस वक्त हलाक हो गए जब AK-47 राइफल और पिस्टल लिए हुए कुछ अफराद ने जोहान्सबर्ग के जनूब मगरब में वाक वेडेला शहर में एक बार में गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह के एक और वाकये में केप टाउन के नजदीक आज 10 लोग हलाक हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में मुलव्वस बंदूक बरदार अफराद को तलाश कर रही है। पाकिस्तान में शिमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक पॉइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि तेहरान ने आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के मकसद से पेश किए गए 7 रोजा रोड मैप की तजवीज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द अमल का नोटिस लिया है, ताहम उसे अभी तक किसी सालिस के जरिए अमरीका की जानिब से बाजाब्ता कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। इराकची ने कहा कि ईरान सालिसी करने वालों के जरिए अमरीका के बाजाब्ता मौकिफ का मुंतजिर है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वाश में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अभय सिंह को मर्दों के सिंगल्स जुमरे के स्क्वाश मुकाबले में चांदी का तमगा मिला। वो फाइनल में एशिया के खिलाड़ी से हार गए। खवातीन के सिंगल जुमरे के स्क्वाश मुकाबले में अनाहट सिंह ने भी चांदी का तमगा हासिल किया। तीरंदाजी में मर्दों और खवातीन की कंपाउंड टीमें रिकर्व के साथ साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। इधर भारत के अंकुश पंगाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरोज सालिमोव को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की

0: पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल की दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर रहा है, जिनमें अगले 20 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। रूस ने अकवामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग और केप टाउन में गोलीबारी के दो अलग अलग वाकयात में 27 अफराद हलाक हो गए। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में चांदी के दो तमगे जीते हैं। अंकुश पंघाल ने मुक्केबाजी में एक तमगा यकीनी बना लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज की नगमे हमने लिए हैं मारूफ गुलकार महेंद्र कपूर की गाए हुई। आज उनका यम वफात है। महेंद्र कपूर 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में पैदा हुई। बचपन से ही गाने का शौक था और उन्होंने अपना गुरु यानी गायब गुरु मोहम्मद रफी को मान रखा था। वो उन्हीं की तर्ज पर गाया करते थे और शौकिया इधर उधर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे। फिर जल्दी वो बम्बई शिफ्ट हो गए और वहां जाकर उन्होंने क्लासिक की मौसीकी की तालीम हासिल की उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुलरहमान खान, पंडित हुसन लाल वगैरह से। फिर उन्हें एक तरह से कहा जाए तो एक ब्रेक मिला और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके अगर फिल्मों का तस्करा किया जाए तो धूल का फूल, गुमराह, वक्त, हमराज, धुंध, निकाह, आवाम और उपकार वगैरह ऐसी फिल्में पूरब और पश्चिम जिन्होंने अपनी आवाज देकर इन फिल्मों में उनको अमर कर दिया। इस तरह से देखा जाए तो महेंद्र कपूर की आवाज भी अमर होगी और ये फिल्में भी बहुत मशहूर और कामयाब साबित हुई। आज की मेरी पसंद प्रोग्राम में हम आपको उन्हीं की आवाज के कुछ नगमे सुनवा रहे हैं।

0: धड़क ने लगे दिल के तारों की दुनिया,
1: सबर जाए हम बेकरारों की दुनिया,
0: जो तू तो

कपूर इस फिल्म का नवाब सुन रहे थे आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा निगाती साहिल मौसीकार एन दत्ता। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश जिंदगी और मौत फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज में मौसीकार है सी रामचंद्र।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनूं।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

वक्त फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार थे साहिल मौसीकार रवि। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। आज का प्रोग्राम खिराज अकीदत था अपने जमाने के मारूफ गुलकार महेंद्र कपूर के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है जनाब नफीस सिद्दीकी का तहरीर का ड्रामा जिंदगी जिंदगी।

0: ऊपर बैठ जाए, ये दवा पी ली, आइए।
1: भगवान के लिए मुझे तंग ना करो, चले जाओ यहाँ से।
0: लेकिन आपका दवाई पीना जरूरी है मिस्टर अजय, इसकी दवा ने तो आपको जिंदगी के करीब कर दिया है।
1: जिंदगी जिंदगी कौन भीख मांगता है जिंदगी की।
0: आपने तो मरने की पूरी कोशिश की थी लेकिन मर नहीं पाए, शायद ईश्वर आपको जिंदा देखना चाहता है और कुछ लोग और भी।
1: दुनिया के चाहने से क्या होता है, वो तो मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती, वो तो चाहती है मैं जिंदा भी रहूं और चलता कुड़ता रहूं।
0: लेकिन उन हमदर्द लोगों का भी तो आपकी जिंदगी पर कुछ हक है जो बेहोशी की हालत में आपको यहाँ लाए थे।
1: वो कौन लोग थे मैं नहीं जानता, इस अजनबी शहर में मेरा कौन है यहाँ।
0: उनका नाम तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन एक दूसरे को ना जानते हुए भी कुछ लोग इंसानी रिश्तों को निभाते हैं। ऐसे तो सबको एक दिन मरना है, फिर भी इंसान दूसरे इंसान को मरता देख नहीं सकता, इसलिए मैं भी।
1: लोग तो सड़क के कुत्ते को भी मरता देखना नहीं चाहते, जिसके काटने से वो पागल होकर मर जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की हमदर्दियां किसी इंसान को छत का साया और पेट पर रोटी नहीं दे सकती। बेवकूफ कहीं के जरा सी नेकी करके जन्नत में जाना चाहते हैं। तुम इन लोगों की बात ना करो सिस्टर, ये मरते हुए जानवरों को दवा देते हैं और मरते हुए जानवरों की खाल खींच कर कारोबार भी करते हैं, धोखेबाज हैं सब।
0: ऐसा ही होता है मिस्टर जी, आप ठीक कहते हैं।
1: तो फिर मरने दीजिए मुझे, ये आबे हयात मुझे क्यों पिला रही हैं आप।
0: ये तो मैं भी नहीं जानती, पता नहीं क्यों जब आप दवा पी लेते हैं तो मुझे सुकून मिल जाता है। उस रात आपने दवा नहीं पी थी ना, तो मैं चैन से सो भी नहीं पाई।
1: मेरे दवा पीने से आपको शांति मिल जाती है?
0: जी, आप मुझे सुकून देना नहीं चाहते?
1: लाइए
0: प्लीज, ये ले, मेरे हाथ से पी लीजिए।
1: ठीक है, पिलाइए।
0: जी, ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ओहो, आ गई आप। बैठिए बैठिए बैठिए, शायद आज फिर किसी मरीज ने थका दिया होगा। मैं चाय लाता हूँ।
1: रात के 12 बज रहे हैं, अब चाय पियेंगे आप?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई, चाय पीने के बहाने ही आपसे बातें कर लेंगे। आपके मरीजों ने तो
1: प्लीज राज, मैं बहुत थक गई हूँ।
0: नेचुरली भाई, थकन तो होगी ही। रोज 2-4 घंटे ओवर ड्यूटी करती हो और बिस्तर पर लेटे लेटे भी मरीजों के बारे में ही सोचती रहती हो।
1: राज, अब तो आप रोज ही तंज करने लगे हैं।
0: नहीं नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, आप ही मेरी ख्वाहिश को तंज समझ रही हैं। पिछले चंद सालों से आपके होते हुए भी मैं तनहा जी रहा हूँ। नींद आती तो है, मगर आपके इंतजार में जागता रहता हूँ।
1: मुझे एहसास है राज, मेरा भी आपके अलावा और कौन है।
0: फिर भी आप मरीजों के बारे में सोच सोच कर रातें गुजार देती हैं। सोती भी हो तो एक दूरी के साथ।
1: ऐसा ना कहो राज, मैं आपसे दूर नहीं, लेकिन थकन निढाल कर देती है, इसीलिए
0: मुंह फेर कर सो जाती हो और अक्सर सोते में भी मरीजों से बातें करती हो।
1: क्या करूं राज, उनकी कहानियां ही अजीब होती हैं और उन्हीं में मैं खो जाती हूँ। हो सकता है सोते में भी वही ख्याल रेंगते रहते हों जहन में।
0: देखो दीपा, इस जमाने के हर शख्स की कहानी शेक्सपियर की ट्रेजेडी से कम नहीं। आप मसीहा भी नहीं जो उन्हें जिंदगी अता कर दें। आप आम इंसान हैं, उनके जख्मों पर सिर्फ मरहम रख सकती हैं, उनका दर्द नहीं पी सकती आप।
1: आई बिलीव सो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डियर, अब नहीं सोचूंगी।
0: तो राज
1: नहीं राज, बहुत थक गई हूँ, सो जाने दो। गुड नाइट।

0: अजय, मिस्टर अजय।
1: ओह, आप फिर आ गए सिस्टर।
0: ये बच्चों जैसी जिदें अच्छी नहीं लगती। अब आपको दवा पिलाने मुझे आधी रात को आना पड़ा।
1: आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है सिस्टर। अब मैं और जीना नहीं चाहता। यू गो सिस्टर एंड लेट मी डाई।
0: जीवन ईश्वर का वरदान है अजय साहब। जिस ईश्वर ने आपको जिंदगी अता की है उससे क्यों नाराज हैं आप?
1: जीवन ईश्वर का वरदान है होगा, मेरे लिए तो जलन, कुढ़न और सुलगती हुई जिंदगी के अलावा कुछ और नहीं है। प्लीज आप चाहिए, मुझे चैन से मरने दीजिए।
0: मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप जीना क्यों नहीं चाहते।
1: और इसी सवाल के खौफ से मैं जीना नहीं चाहता। पता नहीं कौन लोग मुझे इस अस्पताल में लाकर डाल गए। मैंने सोचा था अजनबी शहर में मरना आसान होगा, लेकिन ये जीवन दान देने वाले न जाने कहां से आ जाते हैं।
0: जो लोग आपको यहां लाए थे
1: वो मेरे अपने नहीं थे। नेकी करके जन्नत पाने के हकदार बनना चाहते हैं वो, लेकिन वो मेरा दर्द क्या जाने। वो क्या जाने के जो दुनिया में दोजख की आग में चल रहा हो उसके लिए सुकून का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खुदकुशी। देखो ना, मुझे यहां डालकर सब चले गए अपनी सुखी दुनिया में। कोई पूछने आया कि मैं जिंदा हूं या मर गया? किसने मेरा दर्द बांटा? ये पल तो पल के रिश्तेदार मेरा दर्द नहीं बांट सकते।
0: बगैर किसी सहारे के भी हम जिंदा रह सकते हैं। ऐसा भी होता है मिस्टर अजय कि हंसती गाती जिंदगी को जीवन के पहले ही मोड़ पर ऐसी ठोकर लगती है कि आगे बढ़ना दुश्वार हो जाता है। ऐसा मकाम भी आ जाता है कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक कदम का फासला रह जाता है। और यूं भी होता है कि हम इस ठोकर को बर्दाश्त कर जाएं तो अगला मोड़ नई राहों को जन्म देता है। जिंदगी नया रास्ता पा जाती है और जिंदगी नाउम्मीदी के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाती है। इस तरह नाउम्मीद जिंदगी में आरजुओं का सूरज फिर रोशन हो जाता है अजय।
1: लेकिन इस पुनर्जन्म की तकलीफ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।

0: तकलीफ तो बच्चे को जन्म देते वक्त औरत को भी होती है, लेकिन वो इस खौफ से दूसरे बच्चे को जन्म देने से इनकार नहीं करती, क्योंकि वो इसकी जिंदगी का मकसद है। मैं राख के ढेर से बुझी बुझी सी चिंगारी ढूंढकर अपनी सांसों से हवा देकर सुलगाना नहीं चाहती।
1: फिर क्या चाहती हैं आप?
0: आपको दवा पिलाकर सुकून से सोना चाहती हूँ, और जब तक आप नहीं पियेंगे मैं सो नहीं पाऊंगी।
1: अजीब बेबसी है, पिलाइए।
0: हाँ ये लीजिए जी, थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ अजय साहब। अब एक बात और पूछना चाहती हूँ।
1: जी
0: क्या रोज आधी रात को दवा पिलाने मुझे ही आना पड़ेगा?
1: आपको नहीं, मैं पी लूंगा।
0: प्रॉमिस?
1: यस प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ।
0: ओके ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड नाइट मिस्टर अजय।
1: गुड नाइट। अजीब औरत है ये। मीनाक्षी।
2: राज साहब सर उधर तो देखिए, जनाब की मिसेस तशरीफ ले आई।
1: हाँ
3: हेलो मीनाक्षी। I'm so sorry, Meenu.
2: बस बस रहने दे अपनी एक्टिंग, अभी आने की क्या जरूरत थी?
3: अरे मेरी बात तो सुन।
2: क्या सुनूं? सारे मेहमान तुझे पूछ रहे थे और बेचारा राज तो जवाब देते देते एकदम नर्वस हो गया।
1: वो
2: कैसी कैसी बातें कर रहे थे सब तेरे बारे में, शायद आजकल कुछ रात से। नहीं मीनाक्षी ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों आज भी दोस्त हैं।
3: दोस्त हैं, पति पत्नी नहीं।
2: वो भी हैं। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है।
3: फिर क्या बात थी जो तू राज के साथ नहीं आई?
2: डॉक्टर घोष ने इमरजेंसी कॉल पर बुलाया था, यू नो इट वॉज अ सीरियस केस।
3: होगा, तेरा तो यही एक खूबसूरत बहाना है।
2: दीपा, कहने वालों की जबान तो नहीं बंद की जा सकती ना।
1: अरे मीनाक्षी तुम भी क्या ये बेकार की बात लेकर बैठ गई? अरे भाई होगा कोई जरूरी केस, मुझसे और तुमसे भी ज्यादा जरूरी।
2: दीपा तुम प्रोफेशन को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? तुम जानती हो ना कि मेरे पति भी सर्जन है। मैंने तो पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर मुझसे ताल्लुक रखना है तो बर्थडे पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, चाहे कितनी ही इमरजेंसी कॉल क्यों ना हो। पर वो नहीं गए, मेहमानों को छोड़ने गए हैं, बस आते ही होंगे।
3: तुम्हारी बात ठीक है, मैं समझी थी कि 10-5 मिनट में कोई।
2: मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मरीजों की खातिर सोशल रिलेशन तोड़े नहीं जा सकते। राज तुमसे बहुत नाराज है।
1: अरे भाई इनसे कौन नाराज हो सकता है मीनाक्षी? अरे भाई किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए इमरजेंसी कॉल पर जाना पड़ा। तुम्हारी बर्थडे और मेरा क्या है, इन्हें तो
2: बस करो राज बस करो, चलो अंदर चलो, तुम ही दीपा के साथ खाना खा लो। भूखे बैठे हो ना इसीलिए गुस्सा आ रहा है। और दीपा हाँ। कान पकड़, अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी।
3: अच्छा बाबा
2: आओ ना राज, कम ऑन चल।

0: मैं बहुत खुश हूं अजय, आज तुम ठीक होकर जा रही हो।
1: मैं तो मर ही चुका था सिस्टर, आपकी हमदर्दी ने मुझे जिंदगी अता कर दी।
0: ऐसा ना कहो, जिंदगी और मौत दोनों ऊपर वाले के अख्तियार में है। इंसान किसी को क्या जिंदगी दे सकता है। कैसा लग रहा है अब तुम्हें?
1: दोबारा जिंदगी पाने के बाद जब मैंने इस धरती पर कदम रखे तो ऐसा महसूस हुआ कि इस धरती पर मेरा भी हक है। मेरे पास शुक्रिया का एक लफ्ज है आपको देने के लिए, और अकीदत में डूबे आंसुओं के दो कतरे।
0: बहुत कुछ है ये मेरे लिए, तुम्हें नई जिंदगी मिली ये एहसास ही मेरे लिए बहुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसते हंसते एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कोई मरीज मौत और जिंदगी की कश्मकश से निकलकर हंसता हुआ अपने घर लौटता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा के बेटे यीशु ने किसी बेजान को जिंदा कर दिया। क्या सोचने लगी तुम?
1: मैं सोच रहा था सिस्टर, काश वो मगरूर लड़की आपसे ये

0: पति के दूसरों के लिए किस तरह जिया जाता है।
1: कौन लड़की?
0: आशा, जिसकी बेवफाई ने मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया।
1: कभी कभी ऐसा भी होता है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और जज्बाती होकर रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। यूं भी होता है अजय कि दो इगोइस्ट एक दूसरे पर जान देने वाली शख्सियतें मामूली सी बात पर एक दूसरे के सामने सर झुकाने में तौहीन महसूस करती हैं। एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के बजाय आपस में टकरा जाती हैं, हालांकि दोनों के दरमियान समझौता कहीं करीब ही होता है। क्या ऐसा नहीं होता जी?
0: शायद ऐसा ही हुआ था हमारे साथ।
1: अजय, रेल की पटरियां एक महदूद दूरी पर हजारों मील साथ साथ चलती हैं और फिर नई राहों नई मंजिलों को जन्म देने के लिए आपस में मिल जाती हैं। पटरियों का ये मिलन टकराव नहीं बल्कि नई दिशाओं को जन्म देने वाला समझौता है। ये समझौता तुम्हारी और आशा के दरमियान भी हो सकता था अगर दोनों ने सब्र से काम लिया होता। सोचो अजय।

0: सिस्टर, हमारे साथ ऐसा ही हुआ था।
1: इसका मतलब है तुम्हारी खातिर मैं अपना हर शौक छोड़ दूं, गला घोट दूं कला का, मार डालूं अपने अंदर के फनकार को? आखिर किस लिए करूं मैं ऐसा?
0: इसलिए कि सिर्फ तुम मेरी हो।
1: मैं कब इनकार करती हूं अजय कि मैं तुम्हारी नहीं हूं? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहती?
0: फिर वो स्टेज पर गैर मर्दों के साथ एक्टिंग क्यों करती हो?
1: अच्छा प्लीज,
0: मैं कोई पत्थर नहीं आशा। फिर तुम्हारे पानी में आग लगा देने वाले जज्बाती डायलॉग और गैर मर्दों के साथ मोहब्बत के एक्शन देखता रहूं। तुम्हें क्या पता कि हॉल में बैठे हुए मेरे दोस्त मुझ पर कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। I can't tolerate, आशा।
1: तुम जज्बात में पागल होते जा रहे हो अजय। मैं कोई हरजाई नहीं हूँ जो हर मर्द की बाहों में झूल जाओ। अजय, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, एक्टिंग को एक्टिंग ही समझो। एक्टिंग मीन्स एक्टिंग एंड नॉट रियलिटी।
0: आशा, तुम भी सुन लो, मैं ये इश्क एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझे बर्दाश्त करो।
0: ये तुम क्या कह रही हो आशा? मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ।
1: बस करो अजय, आज मैंने तुम्हारे अंदर भी मर्द की पैदाइशी खुदगरजी देख ली।
0: तो आशा,
1: कितने खुदगरज होकर बात कर रहे हो तुम। मेरी फन की इतनी बेइज्जती। अजय, वो जमाना गुजर गया जब मर्द औरत को सिर्फ बिस्तर की गुड़िया समझकर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता था।
0: ओ आशा,
1: उसे घर की चार दीवारी में कैद करके उसको दासी बनाकर रहता था। धर्म और नारी संस्कार का वास्ता देकर उसकी आजादी को कैद कर लेता था। अच्छा ही हुआ जो तुमने शादी से पहले अपना असल रूप दिखा दिया।
0: आशा,
1: स्टेज मेरा मंदिर है अजय, तुम्हारे लिए अय्याशी का अड्डा होगा। मैं स्टेज नहीं छोड़ सकती।
0: और मुझे छोड़ सकती हो?
1: तुमने ही मुझे छोड़ने का खूबसूरत बहाना बना लिया है। जो इंसान फनकार से उसका फन छीन ले, उसका क्या भरोसा?
0: आशा,
1: मुझे अफसोस है कि मुद्दतों से तुम इसी आग में चल रहे हो। अच्छा ही हुआ जो तुम इजहार कर बैठे, वरना नफरत की ये चिंगारी किसी न किसी दिन मेरी खुशगवार जिंदगी को आग लगा देती। बहुत बड़ी दुनिया है अजय, ढूंढ लो अपने लिए कोई दासी।
0: तुम जवानी के जोश में ये भूल रही हो कि मैं तुम्हें दासी नहीं, सती सावित्री बनाना चाहता हूँ, जो शोहर की खातिर मौत के देवता से भी टकरा जाती है।
1: मैं सावित्री बन सकती हूँ अजय, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा जिस्म नहीं दिल जीतना होगा। औरत की इज्जत करनी पड़ेगी, खुद को सत्यवान बनाना पड़ेगा, जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ऋषि गौतम बनकर अहिल्या को बद्दुआ देकर पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हो।
0: आशा,
1: मैंने तुम्हें चीखने का हक नहीं दिया अजय। आई एडवाइस यू, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। और तुमने उसे जाने से रोका भी नहीं?
0: हाँ, रोका नहीं। मेरे गुरूर ने मुझे पत्थर बना दिया था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि आशा मेरी जिंदगी भी अपने साथ ले गई है। मेरे खुदगर्जी ने मेरा सब्र करार छीन लिया। जागते जागते जब कभी आंखें बंद हो जाती तो इसकी आवाज चीख बनकर मुझे बेदार कर देती।
1: तुम औरत को औरत नहीं दासी देखना चाहते हो, ऋषि गौतम बनकर उसे पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हो।
0: उसे बहुत तलाश किया, मिली नहीं। वो शहर छोड़कर कहीं जा चुकी थी और इस मुसलसल अजियत से छुटकारा पाने के लिए मैं खुदकुशी करने इस अजनबी शहर में चला आया।
1: औरत के नाजुक ऐसे

0: कम मर्द समझ पाते हैं अजय। वो नहीं जानते कि जब प्यार की पहली कोपल इसकी मन की गहराइयों में फूटती है तो उसे लगता है जैसे कोई बच्चा उसके दिल के आंगन में किलकारियां मारता हुआ खिल रहा हो। अजय आशा को तलाश करो
1: जी।
0: वो भी तुम्हारी तरह बेचैन होगी, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। उसे माफी मांगो, तुम्हारा एहसास मिदामत उन जख्मों को भर देगा जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अजय।
1: थैंक यू मैडम, मैं उसे जरूर तलाश करूंगा।

0: राज, रात आपने खाना नहीं खाया?
1: खाया था होटल में।
0: होटल में?
1: होटल में मीनाक्षी आ गई थी।
0: लेकिन होटल का खाना अनहाइजीनिक होता है।
1: अरे होता है, पर इतना जहरीला भी नहीं कि मैं खाकर मर जाऊं।
0: ओ राज, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
1: अरे ठीक ही तो कह रहा हूं दीपा, अच्छा है। अरे भाई, होटल का खाना खाकर बीमार पड़ जाऊं, शायद तीमारदारी के बहाने ही तुम मेरे करीब आ जाओ।
0: मैं कब दूर हूँ तुमसे राज, तुम्हारे अलावा मेरा है कौन?
1: अरे भाई, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा।
0: ऐसा ना कहो राज, मैं तो सिर्फ खिदमत ही करती हूँ।
1: अरे तू करती रहो खिदमत, मरने दो मुझे। अगर मैं मरता हूँ तो मरने दो।
0: बहुत गुस्से में हो आज।
1: जब कभी मैं दर्द से चीखता हूँ ना, तो तुम प्यार का फहर देती हो, लेकिन ये भूल जाती हो कि मेरा जख्म हर मौसम में हरा रहता है। अरे मर चुका वो राज जो कभी इंसान था, अब तो उसकी हैसियत एक कुत्ते जैसी है,
0: राज।
1: जो तुम्हारे बनाए हुए खाने पर जिंदा है, लंच बॉक्स और फ्रिज में रखे हुए बासी खाने पर, जो तन्हाई में खुद पर भौंकता है और खुद ही को खाने के लिए दौड़ता है। तुम्हारे बनाए हुए शीश महल के शीशों में अपनी बिगड़ी हुई सूरत देखकर उसे मार डालने की कोशिश करता है और खूबसूरत शीशों से टकराकर जख्मी हो जाता है। हर रात जख्मी होता है और हर सुबह अपने बिखरे हुए वजूद के टुकड़ों को जमा करके अपने जख्मों पर खुद ही मरहम रख लेता है और इंसानों की तरह टोकरे पर चला जाता है। और
0: भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो राज।
1: भगवान भगवान भगवान! अरे होगा किसी का भगवान वो, तुम जैसे जीवन दान देने वाले मसीहा हो, वहां से भगवान भी चला जाता है। जाओ जाओ जाओ, अरे तुम जाओ अपनी ड्यूटी पर। मैं अपनी तन्हाई में जी लूंगा।
0: नहीं राज, मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगी।
1: नहीं नहीं दीपा, अब मैं नहीं चाहूंगा कि तुम खुद को मेरे लिए बदल दो। अरे तुम तो खुशबू हो, खूब महको, ईसा नफस हो, मुर्दों के जिसमें रूप हूं को। मैं अपनी साथ में तुम्हें महदूद करना नहीं चाहता। हर अजीम इंसान लामहदूद होता है, तुम भी।
0: राज, क्या आज तुम्हारे अंदर भी मर्द की पैदाइशी खुदगर्जी जाग उठी है? पागलपन की हद तक आ गए हो आज तुम। कैसे मर्द हो जो अपने नफस पर काबू नहीं रख सकते?
1: दीपा, मुझे ताना दे रही हो? मुझे? अरे दीपा, मैं मर्द हूं, मर्द। बोलो बोलो, किसको दिखाऊं अपनी मर्दानगी? बोलो। अरे उन मरीजों को जो तुम्हारी तीमारदारी की बदौलत जिंदा होकर तुमसे हंस हंस कर बातें करते हैं।
0: मुझसे?
1: हाँ, तुमसे। अरे दीपा, एक दिन तुम्हारी याद का दौरा पड़ा तो मैं अस्पताल चला गया और तुम मरीज से, अरे उस नौजवान आदमी से बहुत देर तक बातें करती रही। क्या मरीजों का दिल जोड़ना भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है?
0: हाँ, मेरी ड्यूटी भी लामहदूद है राज, मेरी तरह। तुम्हें उसी वक्त गला घोंट देना चाहिए था।
1: किसका?
0: मेरा, क्योंकि मैं गैर मर्द से बातें कर रही थी।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकता था दीपा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी चाहत हो तुम।
0: राज, तो फिर अपनी खुदपरस्ती का गला घोंट।

0: जो इंसानियत को कत्ल करके इंसान को खुदगर्ज बना देती है।
1: अरे दीपा, जिसने अपना वजूद तुम्हारी जात में बिठा दिया, तुम उसे खुदगर्ज कहती हो? और सच पूछो तो खुद परस्त मैं नहीं, तुम हो। तुम अपनी मसीहाई की वजह से मुझे भूल बैठी हो।
0: तो फिर मुझे तनहा छोड़ दो, मैं भी मरीजों के दर्द का हिस्सा बन जाऊंगी। जहां समझौता मुमकिन है वहां जिदों से काम नहीं चलता, और तुम समझौता भी नहीं करना चाहते। तुम्हें यह भी गवारा नहीं कि मैं नौकरी छोड़कर तुम्हारे घर की चार दीवारी में जिंदा रहूं, सिर्फ तुम्हारी परस्तिश करूं, तुम्हें ही पूजूं।
1: दीपा, दीपा, दीपा, मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता।
0: तो फिर एक ब्यूटीफुल औरत को नेकी की राह से ना भटकाओ। जिस इंसानियत को जिंदा रखने के नारे अपनी जुबान से लगाते हो उसे सच कर दिखाओ। दुखियों की आहों में निजात का रास्ता ढूंढो, उनके दर्द को खुशी से बांट लो।
1: दीपा, दीपा, दीपा, ये पैगंबरों और देवताओं का काम मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे ये सब। मैं इंसान हूं दीपा, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं हूं मैं। मैं लक्ष्मण रेखा खींचकर तुम्हारी आजादी को कैद करना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन अपनी बेचैनी की वजह भी नहीं जानता मैं।
0: राज, जब जज्बात के तूफान से बचकर बाहर आ जाओगे तो वजह भी ढूंढ लोगे। बहुत ही करीब कहीं आसपास सुकून की राह भी मिल जाएगी।
1: मिस्टर अजय और मिसेस अजय।
0: अजय, तुम? अब राज, इन्हीं से बातें कर रही थी मैं।
2: दीदी,
0: अब अरे ये क्या कर रहे हो अजय? मैं कोई देवी हूँ जो मेरे चरणों में सर झुका रहे हो?
2: जीवन दान देने वाली बहन भी देवी का रूप होती है दीदी, यही है आशा।
3: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, खुश रहो। अरे कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों को मुस्कुराता देखकर। देखो राज, कल तक ये दोनों एक दूसरे से नाराज थे
2: जी।
0: और इस बेवकूफ अजय ने तो खुदकुशी की कोशिश भी की थी। अब तुम्हें यकीन आया, हर मसले का हल भी कहीं आसपास ही होता है।
2: आपने नसीहत की थी दीदी, मैं आशा को तलाश करने निकल गया और जब ये मुझे मिल गई तो माफी मांगने का मौका भी न दिया, मुझे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी।
0: बैठो, बैठ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ आज राज, मेरी कहानियों के मौत और जिंदगी के दरमियान रोते हंसते यही किरदार है। राज, इन्हीं की कहानियां मैं तुम्हें सुनाकर बोर करती थी।
1: और इन्हीं की कहानियां सुनकर मैं अंदर ही अंदर चलता रहता था, सोचता था कि जिंदगी के कितने कीमती लम्हात हम दूसरों की बातों में बर्बाद कर रहे हैं।
0: अब क्या सोचते हैं आप?
1: अब मुझे अपनी कुड़न की वजह मिल गई है, दूसरों का दर्द दूर करना ही सबसे बड़ी खुशी है। दीपा, दीपा, तुम मां मरियम भी हो और मसीहा, सीता भी हो और सावित्री भी। अरे, अरे कितने कितने रूप हैं औरत के, ये मैंने आज ही जाना।
0: भगवान के लिए मुझे इतने बड़े बड़े नाम ना दो, मैं तो इन अजीम हस्तियों के पांव की खाक भी नहीं।
1: नहीं दीपा, नहीं, तुम्हारे किरदार की अजमत का आज मैं कायल हो गया। अरे मेरे अंदर का खुद गरज और खुद परस्त इंसान मर चुका है,

0: रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का नामा सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में, नगमा निगार एसएच बिहारी, मौसीकार ओपी नैयर।
1: प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा अप...

0: आकाशवाणी कारगिल ला न्यान खान दोन अजीज खान मीमा हसन ला अस्सलाम वालेकुम याले प्रोग्राम न्यान खान न्यान तार तस्पा जनरल न्यूज यूनिट आकाशवाणी कारगिल छोसना फिसपा प्रोग्राम छुने न जू सेवा संकल्प अभियान जरे गाउन अति गवर्नमेंट छोखना अति मीमा हसन ने फंतोख से फिया गागा जाति सिक्किम ची गाज गोंबेक लेंस दादस को लात फिसपा बसे मीमा हसन ला डिसोर ग्लेप छुने जू ध्यान जों से दिनी दी सेवा संकल्प अभियान दिनी दी प्रोग्राम पियानुक ngatis topic po jaso ju pm kisan gao ngatis salpo vasirna pradhanmantri kisan samman nidhi yang dis ko last pra tam mina agriculture department la ngatis ko jus khoj ju ka gulzar hussein sahab gulzar sahab assalam alaikum gulzar sahab tatus ma phut pa ngatis goma yara de tit ba ju di pradhanmantri kisan samman nidhi scheme po du government ni ngata mimang sir ki lakhum mi maqsad ji jin min ju ko tontak pu jin
1: bismillahir rahmanir rahim pradhanmantri kisan samman nidhi yojana scheme po ju ये तोंदा पुदुई में जो नति पूरा हिंदुस्तान यानो नति प्राइम मिनिस्टर इस एक स्कीम ची लागू बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये सेंट्रल इस गवर्नमेंट स्कीम पुला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जनचिक स्कीम तक ये स्कीम पे यानो नति किसान सा का खासकर सख्यात गठन उल्ला नॉन कोआ दी स्कीम पियानो को 2000 ऊंचा फिया खोन ला दी दी फनके थपचा में सुपया चाइना दीदी फनके थोबी फिया मेन चीज पो हकदार को इनसु किसान ला सर
0: सैयद पो मरगोस गा खिन ना यंग नौकरी पे मियो मरगोस कैसा ता नौकरी पे मेन मांगता गुजर सदा नौकरी मेन मांगते जा बिजनेस बे या छोलेन बे दो चंग दिन दियो तिना बस सैयद पा जना जो को फ्री गो जा को फनिक्स छोलेन या दिया बिजनेस पे या ठेकेदार इन द सोला दोन लचांग मिथोपी या तो
1: दे मिथोपी चांग देनी मिनु खासकर गवर्नमेंट ही थोबी स्कीम पियानु एज ए 10000 इकना गेन लखवा पेंशन
0: कस
1: थोबे दे 10000 गेन ला
0: कस
1: 10000 गेन लगा सूचे पेंशन थोबना ओदुला दी किसान चे झारखंड पुचवा यांचा मेन सु
0: कस
1: पेंशन 10000 इकना यो गोंद एज नता सोशली ओल्ड पेंशन जरे नो दे 1000 2000 जरे याद उदू सो 10000 का थुला खनु ला मैंने दी स्कीम पु चुआ यंसु खास कर माना मेन चीज पुइंसु खुए मी का जमीन यो मा
0: कस सही लेकिन दर से किसान
1: बिन किसान चो खला राय मी का इंतकाल यो मा जरीन मी यंसु ओ या राय मी का इंतकाल म्यूटेशन नंबर तंग सो मा माना जरीन दो यो नका तो खवा रजिस्ट्रेशन बा न्यांचा इंसु स्नान ला गुमा गुमा चोचना माना चांग दी देन मेट पांगाती किसान सरस्योस
0: कस
1: देनु रजिस्ट्रेशन बचाना चांग देनु स्कांचा वांगचा लैंड रिकॉर्ड्स कांचे या फलांस कोई खसरा नंबर्स कांचे खाता नंबर्स
0: चांग मेट बा
1: कुलिया कुलिया ड्यू देन अचानक गवर्नमेंट इज रूल बस की खूनी लैंड रिकॉर्ड कंपलसरी बस की जून ध्यान लैंड रिकॉर्ड यो में जरूरी छाना देख नाती नाची डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज ए चीफ या नाची पीएम किसान यानुक एज ए डिस्टिंक्ट नोडल ऑफिसर नाची मैम रजिया जैन मैम इस पूरा आगे तक देना बस की कंसर्न एयो सब क्यों से खुआ जैस की चांद सिंह नती कारगिल वन दिन सपा 2019 से कंदिन सपा रजिस्ट्रेशन सो से दोन सगे लैंड रिकॉर्ड सब क्यों मा जरवीन देखा ना कुलिया कुलिया अचास क्यों क्यों सो से लैंड रिकॉर्ड सब जम बसे दोन यंग अगेन यंग अचास खूनी देना लैंड रिकॉर्ड उन अपडेट बसे रामी का यथखनित का यथखन पर अचास अपडेट बसे छाजस्टल मेन ना का तो अर ने खुआ दी फन के थपखन बेनिफिट पर किसान साहब वन छे चाजु छानिया अची एज ए चीफ या अची नोडल ऑफिसर मैम रजियास कोई भी मेहनत का अचास आगे साधन बस क्यों से दिली लैंड रिकॉर्ड अपडेट बसे ngati kisan saga di penew continue lu shabas
0: kasa bakhshis gulzar sahab ta zer bi ton penzu ga sagat ngati ju ga asil la dir guz di rukh sir guz do tan kor guz do mo tan haqdar tan do man tu mitop jas asan sin zu
1: kasa
0: ta condition jap na jama ti da yer mol bi nazin ki na na nokri pa mi umar guz ya kha 10 ral thal pension mi umar guz
1: kasa
0: de mil la galar guz do dir guz do mo zikan ni gulzar sahab ta ta sor bashin ju pm kisan scheme na jos di penew ga yer zaj bi bari sagat palas tum ni स्टोंगिस बसे साले अनु या लोखर जानु स्टोंग टू गोचिन जरे ड्यूक है अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जिन पर जो दी डायरेक्ट डीबीटीएस सिस्टम पर गजुक शैलाज बात या तो नाती सहयत पौनला आती जिंगबात बेबिंग ना या कोई ना नो गोजदो मुनिफिया गजुक शेरोक छे
1: सर दी क्वेश्चन पुयरेस माना खचन क्वेश्चन छे सर दी डायरेक्ट डीबीटी जर सर गवर्नमेंट इसनाला पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस योचना एस पर अकाउंट भेजो छु सरिया
0: कसा
1: जरसा खूनी फार्म पियानु गा अकाउंट चिकता सोचना अकाउंट नंबर को गा तो देना अकाउंट पेनु खोने पेने छेने चुक छाना उदूस बस खची की अकाउंट डिजिट ची चीज बस गलत अकाउंट यानु पेने छेने चुक देखा ना आदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस की आधार बेस बस सर आधार बेस मतलब पु आधार पुनमो गा अकाउंट सी लिंग योजना दे पेने छाना डायरेक्ट डिबिटी यंग जा सुन की आधार न लिंग योजना मैंने खोई पेने

0: कसा
1: छचामा सुने छान गोरमेन इज बस की आधार भेज बस आधार भेज मतलब पुखे आधार पन म गाय कोन छि लिंग न दम पेने छैन छु छान स्नान लंग फार्मा स यों न छ जु गा पेने म उस
0: हा
1: ना मा उस फलान म उस फिस्तान उस ला यों मत पिन नक्सा दुस पिस किल्ला बान छु छान बान छचा सुने स्नान लाई कोन भेज पने कोन पे छचा छु देन कोई आधार न लिंग पने दम पेने छचा छु छान कोई आधार पो मिसाल जे एंड के बैंक कारगिल न चुक या स्टेट बैंक न आयो चुक या खुरी आधार को खुरी फ्रिक न मुजवाइन अकाउंट फेस उत्पना दे अनु पेने सो चुक छाना फार्मर गन चुक दे अकाउंट पिंग मान में मान मा हो चुक दे अच्छा स्टेटस चेक बना स्टेटस बस चेक बस खुआ शो बस स्थान बना फार्मर जेनु ता फार्मर सा दे दे अकाउंट पिंग मान गिन मेन मान मेन दु चो अकाउंट सिंगा मान मेन जेनु दे कना अच्छा ज्ञान बो ते ते खेरे बेंग सो से कोन चेक बस स्थान यहां सो यो मिन खुंती खुरी खानदार खुरी फ्री गन खुरी फुआ आधार मालदान मत बना आधार पतंग मना
0: आधार
1: मन कौन छो सो छाना उदूस बसे आधार लिंग बना उदूस बसे ज्वाइन है कोने नो पेने सो सो चाइन और दूसरा दक्षिण अति पोस्टल जिनसे कोने दे अति दाखने अनु उदे अनु कोने अनु नंग दे अनु पेने
0: आधार थु दो दे अनु
1: दक्षिण अति एयरटेल जिनसे अनु ने अकाउंट खचिक एयरटेल ये देने दिन का उदू ने अनु लिंग बस उत्पन्न दोने अनु पेने सो सो अनु छाना मीमंग अति किसान सगा गुजारिश दिया बेचारिया रंग अकाउंट पुगा अकाउंट से नंबर लिंग योतना दिया नंबर ठीक ठाक बसे लिंग बसे जगचा आ अकाउंट पिंग ना लिंग पुथने ने यहाँ अकाउंट सी का लिंग का तो खेरना का तो पीएफएमएस का रिजेक्ट स्थानी नु की आ का लिंग छाचांग मंगमो गोर बचो छाना मीमांस ला दिया जरूरी इनकी फार्मर सा खासकर किसानी फार्मर सा का कौन सा दिया जरूरी इनकी खुंतंग खुंती गाय कौन सी नंबर लिंग योतना देना अकाउंट पर नंबर लिंक बसे जगचा ताकि दी पेने बन मिछा चार बस
0: निगुजा सत्ता दे माता मार दमस पर भी समझू नि दिया माता रजिस्ट्रेशन बगा अकाउंट छे ता या मते पीएम किसान नाम जो स्कीम नाम जो रजिस्ट्रेशन जो दो ई केवाईसी या वेरिफिकेशन ऑफ पीएम किसान दो मति सगत बोलला दु मशी जस्ते करता शिकार ले बिंदु जो के मा पेने मालो तुसी का पेने माले बजले ई केवाईसी मशना दी चीज प्रोसेस हो छ यार चीज का चंगाती सगत बोलना छ दी लाभस्थान बुक सा
1: लाभसा पीएम किसान यहां सोमा रजिस्ट्रेशन बाजुम न कतो सोमा सुस रजिस्ट्रेशन या कतो बिन न कतो खुआ एज पर 2019 डेट पो यो मर गो सिंह 2019 जब बना 2019 20 21 22 23 दो सोलह छान इंतकाली डेट पो
0: कैसा
1: और दूसरा आती पीएम किसान या खासकर 2019 सिकना टिल डेट दाक छपे आता पीएम किसान रजिस्ट्रेशन बस ध्यान गा सूची की फादर चिक डेट छे मिसाल छाना उदून लमान आसानी एक दो महीने अपना वरासती इंतकाल पर फ्री मी का लॉकचाइन फ्रू इन नौकरी म्यों मर गोशिन यंग छाना फादर डेट छाना का तो फ्री मी का दो तीन महीने के अपना वरासती इंतकाल छे छाना खोज गाची ऑफिस लयों से गाचस फार्म तंचिन पीएम किसानी ओदी का खाता नंबर पांचास बीस तंचिन खासरा नंबर बीस तंचिन डेट ऑफ म्यूटेशन तंचिन यानी नाम यारी मी का इंतकाल सो मिन जरा ओदून सब पटवारी का ना खोचा छाना उदून ला दोना ध्यान मेन चीज पर रामी का राशन कार्ड पे उम्र जरूरी और दूसरा रामी का राशन कार्ड उम्र को छाइन और जो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट पर आते नाम को सोमिना या हॉस्पिटल का सोमिना या खामा सोमिना इस पर नंबर ला डेथ सर्टिफिकेट क्यों से फॉर्म पे अनुक दुनगांग में कम्पल्सरी तांग में जरूरी सर छाना उदून तना स्नान लंग आती डिपार्टमेंट अनुक रजिस्ट्रेशन बात दक्षा गवर्नमेंट बस सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन रंग इस बचा रंग इस सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन या सी एस सी सेंटर का सोच से बचा और दूसरी रंग सना सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन बेमकसद ध्यान जो एक ट्रांसपेरेंसी सचिन सुन हजर न खोई कना रजिस्ट्रेशन सो सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन बस खोई कना छाचिन सुख सर ई के वी सी चो से अप्रोला छाचिन सुख सब डिस्ट्रिक्ट ला खोई जूना लेवल का सो खोई ला सो से ना खोई चेक बचिन सुख की खोया ध्यान रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड सबमिट बस सुगा या डेट सर्टिफिकेट सबमिट बस सुगा राशन कार्ड सबमिट बस सुगा खोई आधार प्रॉब्लम का तुम इंदो दे कना खोज दे कना अप्रूव ता से नी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पीएम किसान ला छिन छाना ध्यान खोज चेक बचिन ध्यान का तो सही का तो ना एस सचिन स्टेट नोडल ऑफिसर का नी लास्ट पिका स्टेट नोडल ऑफिसर अप्रूव से आगे ले चिन दे कना अंडर प्रोसेस सो से नी एक दो महीने के अपना या एक महीने के अपना फिर रजिस्ट्रेशन कम्पल्सरी सो से रिकॉर्ड लंचिन सर स्नान ला माना आज रजिस्ट्रेशन बस पहले पहले चना अगले दिन उसका खुआ आई डी वाई डी माना चिंग यान पो फार्मर्स ला गा शोक शोक चेना गड़बड़ मिछा चे बेफिया फर्स्ट ऑफ ऑल रंग सो से रंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन बा माना जरूरी।

0: कंट्रीज ना होती कारगिल में फॉर एग्जांपल शुगर दृष्टा ब्लड प्रेशर दृष्टा मोटापा दृष्टा या अर्ली एज जवान उल्ला हार्ट अटैक छात्र हुए या जवान उल्ला स्ट्रोक छात्र हुए छाना दो बिल्कुल रीजन बजाय ना लाइफ स्टाइल गाती ठीक मत पजेसी मी डुल मडुल बा गाड़ियां डुलत हमेशा गाड़ियां डुल मची है जिन गाती खुपे गाते जन पना बराबर जे लेकिन वो दो ठीक बस यार यूटिलाइज मचा फैट इंजीनियर ना खुपे फैट दन मना छिल्प दन मना छिल्पो स्निंग इस्तान यंग यांगाती ब्रेन इस्तान या जमाई चचिन दोस्त बसे दें ब्लड फ्लो कम चचिन है ना ब्लड फ्लो कम चाहे दोस्त बसे आता हार्ट अटैक यों में है चांस चचिन यां दत्तो लांगाती बॉडी इंसुलिन जैसे आती इंसुलिन या ना ग्लूकोज जो चुपी चीज़ यों चिन इंजाइम चिक इंसुलिन दे फंक्शन पो कमी है चिन दोस्त बसे आता शुगर चे चाचिन चाहे एक्सरसाइज बिल्कुल मलंगाती या हेल्दी लाइफ स्टाइल या ना बिल्कुल सेहतमंद दुख टू सामना बीमारी दूर दुख टू सामना या लंबा जीवन बिना किसी पर डिपेंडेंट होके या से कमाई इंडिपेंडेंट जिंदगी दुख से दुनिया के शोक सामना को तो एक्सरसाइज मारे बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट इनका साथ
1: कसानी दी अंगतेस एक्सरसाइज बेट एक्सरसाइज सी टाइम पो गता नंबर गुशिन गसु एक्सरसाइज रि गता नंबर गुशिन देस कुले चीज नवा
0: एक्सरसाइज सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज वॉकिंग इन ना डुलचा मो तो डुलना फितो का डुलना 15 मिनट कम से कम डुलचा है या हफ्ते आने टाइम मांगना का तो आधा घंटा हर दिन के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन है ना आधा घंटा वॉक बचा ब्रिस्क वॉक मतलब जल्दी जल्दी डुलचा बा मितांचा माना कुलिया में ब्रिस्क वॉक मतलब उतना चलना चाहिए आपको कि थकने टाइम तक जिससे आपको हार्ट बीट तेज सचने यारी हार्ट बीट को यहाँ पता है पसीना मत सुख छना फिर आपने अच्छा एक्सरसाइज पसीन छना आती दो गचुगा टाइमिंग को यार मोहतुक बना फिर तो बना आप एक कंसेप्ट है अलग अलग कंसेप्ट एक कंसेप्ट चुद मोहतुक सुबह 7 कह रहा हूँ मोहतुक 7 बजे कह रहा हूँ अगर आपने वॉक किया एक्सरसाइज किया तो ज्यादा फैट बर्निंग में यार सिल्पो जू चुके ज्यादा इफेक्टिव लुक रहे लेकिन दूसरा कंसेप्ट एक है कि आप दोपहर में करोगे 4 से 6 के बारे में वो आपकी बॉडी को ज्यादा थोड़ा एथलेटिसिज्म में पावर देता है क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में खोपा जान पो दोस्त बस यारी मसल पावर होचिन और मसल एथलेटिक मतलब फंक्शनलिटी गला डुलचिन जरे छना यारी चॉइस आप सुबह भी कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो अगर ज्यादा अगर वेट लॉस करने के लिए करना है तो सुबह करना बेहतर रहेगा या आपको ज्यादा फिटनेस के लिए जैसे आपको एथलेटिसिज्म बनना है जैसे जवान बच्चों के लिए उनको दोपहर में अराउंड 4 to 6 ज्यादा गला डुलचिन तना वॉक पूछी बच्चा ब्रिस्क वॉकिंग एक तो मैंने बोला ब्रिस्क वॉकिंग तो मैंने तेज तेज डुलचा माना बामा मितांचा माना कुलिया में डुलचा चढ़ाई और उतराई में चलना नहीं प्लेन पे चलना है क्योंकि खासकर आती में छिमिला चढ़ाई उतराई में अगर चलेंगे तो पुक्स में क्या सुनसना पुक्समा जरमो छिन खेमो पुक्स में का लोड छाना का तो पुक्स में जोड़ सागा दो सागा आती जोड़ सा जरमो छाना प्लेन का डुलचा ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे 15 मिनट्स और अल्टरनेट डे 30 मिनट्स
1: एक्सरसाइज
2: दसों सौ 35 प्रोग्राम के निरूपण हृदय लुक से स्कोरला मीडियम का जो आकाशवाणी करके लेन
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
2: मीडियम का जो आकाशवाणी करगिल कसा प्रोग्राम मजद फ्रूनी फिला प्रोग्राम फचुकन पॉइंट तैबा बानु या प्रोग्रामी प्रोड्यूसर पॉइंट गुलजार हुसैन
7: अस्सलाम वालेकुम आकाशवाणी करगिलिकना फ्रुनी प्रोग्राम पो फ्रचुकपा अंगचंग एंतिदुनला लिप्स्योत प्रोग्राम न्यानेनोत खान नोनोपा नोमोपान अर्द्यांगमा जागे देंतांग नानमेत छानमेत जुक्से दुक्तुक यांग अची जुना सलाम पो फ्रुदमोचन सोंशी नोनोपा नोमोपान लोनांग सदुम्बरी जे लाजुगी आदितला कृष्णा मिगु खान दोना स्पेरा जेरपा मियान खान मीमा सुनी मीना फेसपा जगचिक मल्ला ख्योमाचुक दि जगपो लो स्टोंचिक नार गुबग्याना गपचु नारियात नफान लगा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ यानी WFD जेरबीदी एदारे छोसना मल्ला ख्योंगे न्यूते इंसुक देखना कुल्या कुल्या दि जगपो जग

0: बरेगा गेम पुछतरनी
1: ते चा मिसा
0: मिसा था। अच्छा गेम से आयला इंटरेस्ट में था
1: यो
0: नहीं।
1: दे वर्ष से यो में तो पता।
0: अच्छा एम चीन बुरी
1: नहीं एम पुएन त रेडियो रेडियो खोला जो मियो आता जैसे डायरेक्टर रन जी।
0: अच्छा
1: आलू
0: छो पोजीशन ही का दुख चस्को बेगा दुख से रिची बेसंबा
1: दयालुक से तना तुम मूवी शूट बचा रहे डायरेक्टर जो हमारी इंग्लिश नी पे रहा समझ नहीं आ रही बारे में एक मूवी चल रहा
0: है। अच्छा अच्छा बस नहीं ट्रेवल बाता
1: इंग्लिश ट्रेवल नहीं आता ना पसंद में ट्रेवल हाँ
0: यारी यूल करने
1: वही लो सिल्मोना
0: सिल्मोना
1: है यार हाँ ये फिल्म में
0: बारे का ना
1: मात पेरेंट्स इस बात की तुझे ना बाहर ला समझा बाबा ने वहाँ मिशन ना अच्छा
0: अच्छा बात ना नो
1: नहीं शुक्रिया
0: तेरी फेवरेट टीचर पुसी नी स्कूली
1: तो स्पेसिफिक ना सारे टीचर ना पूरा मामूद पे तो स्पेसिफिक टीचर ना मैं पिज़ा जाए आवाज़ पंच ना
0: पिज़ा ही ना अच्छा मैं
1: पिज़ा चा तो गाइड बात में तो तगड़े से ना केक मेचुअर में तो ना मैं गाइड वाइड बात में रहता ना ठीक है ना।
0: अच्छा बस ना नहीं यारिस मतलब यारी स्टडीज का क्लास सब पिक कंटिन्यू बुक्स हम सब
1: इंगेन मिसाब को पीएचडी जाए।
0: अच्छा अच्छा बस ना नो यारी फ्यूचर पे गुड लक थैंक यू आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू
1: शुक्र है दूंगी फिर बेस्ट है ये अपॉर्चुनिटी में पहली बार ना जो सोचता हूँ इंशाल्लाह आएगा दूसरे ज्यादा
0: ऑल द बेस्ट नो नो थैंक यू हे नमो पगा क्लासिंग बु एंतु चिलेप चुए या मोल

0: 2045 પ્રોગ્રામ યુનિફિલ્મ ફુનિફિલા મેડિયમ વિકા દિવા આકાશવાણી કરકિરીન કસતા આકાશવાણી દિલ્હી કના હિન્દી ના અંગ્રેજી નો ખબર રિલે બેત રિલેલા ડંબાઝાત
1: સમાચાર કે સાથ મે જયા ભારતી प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है।

0: लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमो को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said, India will mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. The Prime Minister said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories. The Prime Minister stressed that the census is a national responsibility and said the facility for self-enumeration makes the process easier. Ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on 2nd of October, Mr. Modi spoke about cleanliness and public participation. He also highlighted the protecting of the environment to strengthen the entire ecosystem. The Prime Minister said millions of young people have recently taken a pledge to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He urged people to support those trying to overcome addiction and work towards a drug-free youth. Mr. Modi said the nation celebrated Ganesh Utsav with great devotion and enthusiasm recently while highlighting the festival's growing popularity beyond India. Concluding his address, Prime Minister Modi urged listeners to continue sharing inspiring stories from across the country. Raksha Mantri Rajnath Singh today said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi. He said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister said as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनी चौकन्ने रहें।
1: कम सूद पर लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह,
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Dostlar çok pointes. Burgi Luri genin yutbin. Medya Amerika Diyo Akashvani Kargelin.
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए वाओ
2: फसी फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: कम सूद पर लोन चाहिए वो भी ऐप से वाह
2: फसा अनजान ऐप से बचें
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: मेडिमेविका जीव आकाशवाणी करगेलिन कस्ता प्रोग्राम इन मजद सगेत पानीफिला प्रोग्राम फुचुकन पेन मोहम्मद यहिया यंग प्रोग्रामी प्रोड्यूसर पेन गुलजार हुसैन

0: टोरिस कुन थेपचना संग थच्चाज इन जरबा छिंदु नती लोकल गोसलम कुन लोकल दुगजो लंगजो कुन खुंगिस पसन बचाज इन खान तक्सांग अति खेते लद्दाख अनुक लोकल बाली गुंचास गुंचाउन क्रतपा मुफोक गोने थोंचास पु दुन ला खुंगिस मना क्यूमो अर्गाचा बाली फिंगमा बाली टोपी कंगशुब लक्षुब गोने थोंचास कुन ला अर्गाचा इन जरबा छिंदु खुसूसन तक्सांग अति फेस्टिवल कुनयानुक रंग रिवायती चलक कुन नुमाइश लजचस्पोस नति स्नापासी थारो जरबोन उजवा जरबोन स्क्याजर खान कुन अर्जम तोक्सकुन चुरा खुर चस्पो दु तोक्समना मंगमो गौनस बसे टूरिज्म कुने दिहान पु क्यमो ह्यांगशास इन जरबा छेंदो टूरिज्म ह्यांगशास पुस बसे टूरिज्म कुने दिहान पु क्यमो स्केचस इन जरबा छेंदो टूरिज्म स्केचस पुस बसे युल्ला यर्ग्यास युंगचा चाना यूनाइटेड नेशन इग्रालिका सना 1980 अनुक 27 सितंबरी जकपु वर्ल्ड टूरिज्म डे मिंगतक्सिका मनाई बोजरे स्कस्कन इन मेंसुक ताकि दुनिया यानुक टूरिज्म में अहमियत पु समाजी हिसाबिका इक्तिसादी हिसाबिका दुना सियासी हिसाबिका स्केचुपे मीना गौस बसे लोकल जॉबी थिक पु स्केचस इनसुक दुना सुनसे सुनसे थोंगलेन कुनला अनलोकचास इंसान जरबा छिंदुक 2026 वर्ल्ड टूरिज्म डी मकसद पु द टूरिज्म पु खुरंग डिजिटल चायुत पी प्रलुक जोते इन जरबा छिंदु गौस बसे होटल ना गेस्ट हाउस कुनला समोना खोंगी फनखे अनु केद युंगनु जरे
1: की खुदा वंदे आलम पुस गा मखलूका चिक दी दुनिया पी का लन चुकसित ना की रोजी पुसंग खुदा खुना यंबो कले योत जरे मगर दु इन नसंग अति तंजीम कुनी निजाम कुन संग दुनिया यानुक डुलन चिक युंगचा खोंगस दी कुर्रे जमीन पी का गचुगा मिमंग कुनी मुश्किलात कुन हल छचस दुक चिबस से मिस्यू फिंगमा और गुशा दु कुदरती वसाइल कुन ला चौम से तहफुज जक पर गुशा दु आबादी दुनिया या नुकसान से के चुक दुनिया का कंट्रोल बचस पुचान से छछा दु जस्टस कुन गाउमा खोंगस नमा खुरे दि फैमिली पलानी नजम कुन इजरा बसखन इन मेन तजर्बा छिंदो ताकि मिमोस कुने मुश्किलात कुन न्यून से छचुक पी मीना गवयानुक मान उल हमल इन्नी अशिया मना मंगमूस चुसे युते इन चुक गाउन स्ट्रोलिका मिमोस कुने मिस्यू त्रू से लुशा इन चुक खुसूसन गति बुस्त्रिंग कुने खोंगला खोकपा निरम खुंगशी हाथी का संग लेबात चोक छाना गोरमे ने छोकना दिमान और हमल इनमें अशिया कुन खुंगे कीमती इनमें मिस्यून ला अन जख से खुंगे सुहाती ख्याल जख चुक पी मीना इन जरे जरबा चिंदो गाव गा बुमो बुसोनी फिरस बुनियादी हक इन जो कि खुंगे सुहाती ख्याल तनलुक लुस्पार गुशाज इन खान कि फ्रुबाज बीस क्यूमो सो मिस्ट्रोलिका खुंगे सुहाती मुश्किल शस लोफशास प्यानु कमी लुशा याना खुंगे खर्ची खुराग यंग निकम्मी लुशा दु तुक्स मुश्किलात दुनिया यानु मना मंगमो युंसे इंसु दि फ्रेस ना निमांगज ला हागुन थोट चुकपी फ्रेस दिरिंगे जाकपु वोल कॉन्ट्रासेप्शन डे बिंग तक्सिका मनाई बसे इन जरबा चिंदु ताकि निमांगज कुनेस मान अल हमल इन मी दि अशिया कुन ना अदविया कुन नि लकलन पु बरकरार जकपी फ्रेस गौज बसे नती आबादी पुसंग लिमिट चीका लुशाज इन जरे जरबा चंदो कसतांगाज गरिस प्रवंदे के जख से दिरिंग से त्रिसु यंता सब पहलप चुगे न्यन नजर दिरिंग से दी त्रिसुला दिरिंग आकाशवाणी करगिल ग्रैली का सकेत प्रोग्राम पे अनुक त्रिसु तंगमत मीना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट छोसना लियाकत अली हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट सिक्योरिटी कंसोर्ट लियाकत अली साहब अस्सलाम वालेकुम कारोबार
2: चुलिन मैक्सिमम पुंगाते बाहर लाकल भी ऑप्शन आयो दरे गाता इंटरनेशनल मार्केट या एनडीए का इलाका चाइना दिल्ली जरे या बाहरी जम्मू जरे कश्मीर लजरे कल बंगियन चात लेकिन गति मीन ला रेट पो सही मत होना अदोन स्कम शुक पे कोशिश बिंदु पे स्कम शुक से चोम बना खुआ एक तो जीक पे खतरा मसों दरे कल ना का तो खुआ जीक पे खतरा सों लामा ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ट्रक चियां कल ना या दो चौक छना

मेडियो मूवी का जैसा आकाशवाणी करगिल का नजर वक्त पर शाम तो उर्दून सो सु कसदा प्रोग्राम की मजद अच्छे नमूने फैलाया प्रोग्राम पर चुकन पुन हकीमा बानू यंग प्रोग्राम प्रोड्यूसर पुन गुलजार हुसैन

खुर्तांस पोखुरे गाहकी मा बानो यंग रश्चि गंती दुन लायों से प्रोग्राम यन खान सरमा सुनसे अचनमो काकफोनो सगे खेत मल्ला निजुना सलाम पु कबूल सोंशिक याले अचनमो दिरिंग से खुर्तांस पे सगवा ससनल लांग जान तांग सुपिक टूरिज्म इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट यानी गती कारगिल डिस्ट्रिक्ट यानो टूरिज्म नाम ना फल्लागा शुरू सोमिन या गाचुक चिया योद जेरे दिनिस कोला यंतांग सुपिक हागो लेपचुपी फलुक्स पेट देर गपना यंतांग सुपिक फेस्पा ओबिंग लेपचुगेत वॉल टूरिज्म डे का डे स्कोला मिस्टर मोहम्मद अली एज ए टूरिज्म डिपार्टमेंट इकना देंगमा जगे दिरिंग सी प्रोग्राम पु यंतांगा अना फनखे छुक और देमो छुरुक याले अच्छे नमून टूरिज्म इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट यानी दि टूरिज्म पु गति कारगिल डिस्ट्रिक्ट यानो गचुक चे शुरू सोमिन या नाम ना फल्लागा यों स्पिन और गति कारगिल वा दि टूरिज्म पु टूरिज्म ही चामशिक अहमियत यो या गचुक शी का जो गा जोस्ता ची का चुक शिक टूरिज्म ए डिपार्टमेंट उन लायर गस यों ने उजरना दिनी बारे यंतां सुक पिकनस दिनिंग हागोरिक लेबचुक पि फलुक्स पेट गति लद्दाख रीजन यंग डिस्ट्रिक्ट निस योत पिनांग कारगिल ना लेजेरे गति कारगिल दुनमना तिजारती मरकज इनमिना गा कसुमी तिजारत चिबाना का तो खों ख्या रिपो गति कारगिल आनो एज ए गति कारगिल ची मिनसुक मरकज इन चुक सिन मिनसुक यानी गा मीमांसिका अगर जी छोंलेन या गति तिजारत मेरे छोंलेन जेरे तंग दि छोंलेन बेमिंग ना खोंगा फेस संग कारगिल वा योंगमर गोस्पत पिनसुक खों इस गति कारगिल वा चाजेरे यांगति बाल योंगतांग या कालीम काली वाली योंगतांग या रेशम योंगतांग दुना गति दुनमा तुसी कैमती योत्पी अर्दवान लांग दुनियांग नो खोंस छोंलेन जी चीजा तुनी खोंस छोंलेन बात पिंचुक 1999 में अनु कारगिल डिस्ट्रिक्ट अनु अतंगा कारगिल वार जेरे जंग सोमिनांग दी जंग पुस छचस पुस कारगिल कोमी ना बेनोला कवामी थोगिका खबरुनी सुर्खियनुंग लुस्खानिंजो फेसेसंग जेरना टाइगर हिल जेरे तोलोलिंग मुश्को वैली या बटालिक दुनसक दी कारगिल ही जंग प्यानुक दी जगह अंसागे मिंगुनांग मिंगतक सुनांग मशहूर सोंखानिंजुक जजरबना अगर गतस तारीख का तो स्थान का तो गति कारगिल तारीख अनुक कारगिल जी

0: कारगिल वार बसंग यानी कि 1999 जिजांग उन बसंग स्नल लंग अति कारगिली हिस्ट्री अनु चंग तारीख चिक मेट पिंजुक छाना जी जंग पुज बसे अति कारगिल कौमी बल्कि बैन अलावामी थोकेकांग खबरों ने अनु यूंस और देखना जी जी जगान मिंगबिंग सोमिना दारेसी तुस प्यांग टूरिज्म डिपार्टमेंट इस टूरिज्म स्पोर्ट्स ना होटल जरे या गेस्ट हाउस जरे दुनगांव मा यर्गस खोइन योतेंसु गाती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना रियासती टूरिज्म डिपार्टमेंट निस्कस टूरिज्म मा रुक्स बसे इंसु यानी गाती गारीले कनतांग से बेनुल अक्वामी थुगिका चामचिगन मिहसापु गंगबस लखथुत बसे गाती लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इकनतांग से छगुल गाती रियासती टूरिज्म डिपार्टमेंट सखपिक्सगस लखथुत बसे जे टूरिज्म प्ला कोस अहमियत तांग से दुन दुन लखेरे दुन लयारगेस तांग में फेला कोस जग बजग फ्रलुक्स बिन युतेंजु कारगिल्ला खिमी थिगंग हेरिटेज साइट्स जैसे गाती बुद्धा स्टेचू जेरे फोर्ट्स जेरे या पैलेस योतनकतो या दुमिन मंगाती कदीमी अर्दुई बहु योतखान योतेंजु यांगाती मस्जिद योतंग जुनगामा यांगाती जंगंग नोगाती कारगिल वार सोंसेन मिनंग दचनासी जंग मेमोरियल सक दुनगामा डिस्ट्रिक्ट प्यांग योतेंजु कारगिल डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ई एडवेंचर दिकना तंसे विंटर स्पोर्ट्स सी मिंगनामाना खास जगिक इनंग चाजरबाना कारगिल दुनिया यांग मशहूर योतेंजु नुनकोन पेक सिकना तंसे ट्रेकिंग यांगाती रिवर राफ्टिंग ओतंग या सुंगतस खेगा स्केटिंग तंगतंग जुनगांग मांगाती कारगिलवा टूरिज्म मिंगना योतिनचुक यानी अगर कतो गातस ठीक बसे कतो संबातंग नकतो गाती कारगिल लांगनोंग काफी टूरिज्म योंगजा छजादो अगर गातस जुनी का कतो ठीक बसे संबातंग से जुन यांग ग्यालारिक बसे जुन लागर यारगेस कतो खोना गाती कारगिल लांग टूरिज्म काफी तेज जगाना खोय फिला एडवेंचर फिला यांगस्मो फिला सामान या चीज यो तेजु कारगिला टूरिस्ट ऑफिस दान मिनसुक 1975 देखना मिनी स्कूला कुला हुकूमत बसुक गाती बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म मिमिंगना चोसुक यानी जैसे गाती द्रास जरे कारगिल जरे मूलबिक जरे पनीखार जरे या रंगदुम पदुम जांसकार जी जगान ला रमो बसे चोखा तंग से जूनियानु यर्गियस खोसुक ताकि टूरिज्म मिमिंगना दी जगान यानु खोयों से जूनियानु दुख से खोंगलता से चोक जरे लेकिन दक्षा नामजांग दी जगान यांग दुपी फिला प्राइवेट होटल जरे या गेस्ट हाउस जरे जुनांग चोसियोतिनचुक यानी रियासती हुकूमती टूरिज्म डिपार्टमेंट ना लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल दुना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिस्कोस लखथुत बसे यक बजक टूरिज्म मिंगना कोशिश बिनियोतिनचुक जुनला यर्गेस ख्यों मिंगना दारेसी तुस्प्यांग डिस्ट्रिक्ट कारगिल ला फॉरन टूरिज्म सिकना तंग से डोमेस्टिक टूरिज्म सक लोबिंग योन योतिनजु कारगिल ला फेससंग ट्रैकर्स ना रिवी थुल बिफिला टूरिज्म सगा तक्संग अति कारगिल ला ख्यारिक पु गतांग बाहेर ना फॉरेनर टूरिस्ट सगा अति कारगिल ला लखमो छु थोबे लखमो आबे हवा थोबे या दो मिन मा खोंगा अर्गुन ला का तो योना खोंगा खा पसन छजिन छना खे का खोंगा स्केटिंग तंग मा थोबे या बियारु ना योना का तो खोंगा रिवी थुल बिफिला क्लाइंबिंग खोंगा माउंटेनियर्स खोंगा शोगों मा छना दुन गांग मा अति कारगिल चुक्स जगा ने अनुक टूरिज्म मिंगना योतिनचुक यानी जरबी तोनपुदे आविन की गाती कारगिल अंगाते जक्सा जरित की बाहर न फॉरेनर रोना का तो या लोकल टूरिस्ट रोना का तो गाते समित श्रीनगर फेरेज या जम्मू फेरेज या यूंखान पुल ले आछे चा जरबना गाती कारगिल यानुक गातांग ज्यादा टूरिज्म गातांग गातांग अहमियत मेत और गाते जून ला ज्यादा गाते रुखशिमा बाना और गाती टूरिज्म दांग दारे दारे गाती टूरिज्म डिपार्टमेंट ला काफी फ्रलुक्स बीन होता छाना यो मिजा को नो इनशाला जगत की गति टूरिज्म डिपार्टमेंट उन्नीस गेला बसे खुंती अति लोकल लेवल के नतंग से रियासती लेवल छपे गेला बसे जी टूरिज्म उनला रुक्स बसे खून दुन लखेरे दुनिया अनुक यर्गस क्योंमी कोशिश बचन कसनी निस्पेरा माना मंगमिक छिंदु निस्पेरा जाने के जग से मिस्टर मोहम्मद अली कना एज ए टूरिज्म डिपार्टमेंट इकाना यंतां सुपिक ओबी क्लिप चुगे वर्ल्ड टूरिज्म डिस्कोला
1: अस्सलाम वालेकुम मैं जुली यरा बड़ी मेहरबान की दिरिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी गता 27 सितंबर हर साल जो है गता आर के स्थिति युल को ने अनसोला पूरी दुनिया अनसोला कथी हिंदुस्तान अनु कथी करगिल अनु अनु कथी लद्दाख अनु दिजक उमा लख्यो तंग वर्ल्ड टूरिज्म डे जरी 27 सितंबर ला कास्ता तना दी वर्ल्ड टूरिज्म डे दरे हर साल तना गातांगा दी वर्ल्ड टूरिज्म

बढ़िया यार। गाता जंस्कार फेस्टिवल्स हूँ, बक्सा रिसेंटली कुछ 2-4 दिन पहले गाता ना जंस्कार फेस्टिवल्स हूँ। तो दून गाँव मस्त चीफ लाइन उस बना कल्चरल टूरिज्म से रहता हूँ दून लगा थी, यानी कल्चर्स वो प्रमोट बाजे उस पे कई बाहर ही टूरिस्ट आई हुआ था गाता दिया था हुआ कल्चर्स का सोच दो जरे दद दिन जाना कल्चर्स वो खोने थ्रू या आगे आती कल्चर्स उन प्रमोट छे था खोने देना कल्चर सुनने का बाकी यंग बुक्स अगर नजर ना आर्टिकल्स अगर बिना या खुंती वीडियोग्राफी से खास है ना दून प्रमोट जो संगति कल्चर सुन जो है बढ़ाई से दांता यहाँ एक गाता हूँ पीस टूरिज्म जाता हूँ गाती लद्दाख वो पूरा गाती हिंदुस्तान आनो पूरे एग्जाम्पल जितना उसके माना काफी पीसफुल प्लेस इन तेरे दी फिर लोग मिस अक्ति आनो गाती दियानो कम्युनल गाती दियानो काफी हारमोनियो गाती अलग अलग जैसे की गाती दिया मेजोरिटी गाता हूँ मुस्लिम ना बुद्धिस्ट कम्युनिटीज होता हूँ दुमेन मंगाता हूँ यहाँ बाकी कम्युनिटी से मिस होता हूँ लेकिन ध्यान होगा काफी अमन होता गाती था एक दूसरे के मतलब चंग दिस डिफरेंस यो ना गाता गाती से एक दूसरे के ओपिनियन डिफरेंस यो ना गाती था चंग कम्युनल वायलेंस रहती जब मैथ गाती था टॉलरेंस होता लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं पीस एग्जिस्ट करता है। तो दी फिलहाल लोग यहाँ पे पीस टूरिज्म के लिए भी आता है तना दना गाता दरे कुछ चैलेंज यो होता हूँ दरे गाता दे लोग हचीक बयानों गाता दरे यूटी सोचना फल्ला का 2019 के नंगा थी टूरिज्म काफी बड़े हैं शेष अभी का गाता यंपो मंपो चैलेंज जगह यूं होता दो हर जगह यूं होता गाता गाच इसे फायदे ही होता नुकसान जगह यंपो यूं होता दे नुकसान उन गाते इस मैनेज चुचे तना गाती इन्वायरमेंट वो काफी फ्रिजाइल होती है सभी का नाजुक होती है जहाँ भी का गाता मंपो दी का मी जो है गाता थ्यक्चस में तंग गाता गाती छू रिसोर्स वाटर रिसोर्स इन्ना हर चीज गाते लिमिटेड होती है वजह से का तना दून गाता दून की वजह से का गाता सबसे प्रॉब्लम्स रही होता है दे का प्रॉब्लम्स रही होता है तो जैसे कि गाता दरे टूरिस्ट मंगमो बना गाता दी छी प्रॉब्लम्स पूछे तंग गाता हर गाती लागा छू रिमिटेड होत बना गाता दी छी प्रॉब्लम छे वाटर शॉर्टेज छे दा दे गाता थोमा छे दा खास कर गाती ले सिटी सुन गाता थोमा छे दी वाटर प्रेशर वाटर एक दी प्रेशर हो जस मतलब हर नंगा छू दा जैसे नानो प्रॉब्लम्स होता यहाँ आता दे वेस्ट मैनेजमेंट जरे दे दी सोम से गाता खिमसा भी है ता नंग आता दे सब्जेक्ट मियो मच बिना दारे गाता हर टाइप ए प्लास्टिक नजरे देखो गाता दी खेमसान गाता निस जे कसम निस हो जैसे ना जैसे को गाता गाते बायोडिग्रेडेबल्स रहता हूँ जैसे कि गाती थी सब्जी रिक्सन जरे गाता दी चोसी सुन गाता दून खत्म छे तंग आते से ना गोस ला कप से तंग माने दून ला डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल्स रहता हूँ दून खत्म छे दून गाती इन्वायरमेंट फिल नुकसान छे हमें तक मार यंग चीज वेस्ट चीज हो जिन दो आता नुकसान होता जैसे कि प्लास्टिक जरे यानी मोबाइल से रिलेटेड चीज संगता इलेक्ट्रॉनिक्स अपीयलेंस रहे था दी चीज सुन गाता से बैटरी जरे दून गाँव में से ना घोसला कब से दून खत्म छछस मैंने खानी चीज आई ना तो दून जलाई बसे जलाई बनंग तब भी दून राग उन लो से था दून दून काफी मैनेज बंगा था काफी कस्बो छे था दू हर हर कंट्री जो है इस देना प्रॉब्लम्स उन फेस छे था कि दी ई वेस्ट मैनेज जो हम कस्बो छे था जना चीज सुन गाती दारे लद्दाख सलाम काफी बड़ाई छिन होता बाकी गाती म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कमेटी जो है काफी गाती दून मैनेज जो काफी खाल रहे था तो गाता दून जरूरी ना यहाँ गाती लोकल रिसोर्स आए का काफी असर छेता गाता आबादी कम होती है इस वजह से गाती इन्वायरमेंट पर नाजुक हो चस्पी का तना दी टूरिज्म पुंगाता है मेंटेन जग पे फिला गाता है दी टूरिज्म पुंगाता है लोशु पे फिला लोगों गाता है मिस होला दे ने कने फायदा लुचे पे फिला गाती गवर्नमेंट इन्ना गाती लोकल लेवल कम्युनिटीज इन्ना या बाहर ना जो हमसे टूरिस्ट होने का तो दू गंग में दी चीज पुका तो बना मना गाता गंग में फिला गेला लुशा से ना कि सहज रंग सोसों से रंग रिस्पॉन्सिबल समझ सों से रंग रंग हिसाब के हर जगह गंदगी बेन मचा हाँ गाती खोर भाई नंग गाज दून का फांग समझ हाँ गाज संभा तो से डस्टबिन जग सुना गंदगी डस्टबिन आता से ताकि खेर खान आसान छचस बसे तो दू तो कला बलिक संभर एक दाना गान यार हर जगह इन गाती प्रॉब्लम सा काफी टैकल छचस इन कम छचस इन तो धीरिंग गतंगा वर्ल्ड टूरिज्म डे का हर जगह देना मनाई जो संग की टूरिज्म गतंगा लुशा क्योंकि टूरिज्म गतंगा हद इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के इंतजार गतंगा नौकरी था रोजगार था मंग बाकी बिजनेस से फिला हर चीज से फिला ये से वैसे ध्यान हो गाता हूँ दी फायदा होता है कि टूरिज्म इसके जरे गाता हूँ दी नौकरी ना गाता हूँ दी लोगों का लाइवलीहुड सोर्स वो काफी था गाता हूँ दी फिर गाता हूँ दी काफी हर प्रोग्राम से गाता हूँ दी गाता हूँ प्रमोट भी हिंदुचे से ना कि टूरिज्म गाता हूँ इम्पोर्टेंस इन लेकिन गाता हूँ टूरिज्म पर गाता हूँ खत्म मचा जो पर सस्टेन जब फिला गाता काफी हर

0: एक लोकल कम्युनिटी लेके अपर कम्युनिटी अपर लेवल तक, एक अपर गवर्नमेंट लेवल तक आता, हर शख्स जो है इसको जिंदा रखने की हमें इसको कोशिश करना चाहिए।
1: taksa chakpi gantes obignani nut pin rural tourism disk korla dingsi achenamoni program pu thama thoni nuk nanme dugna ya yantang chukpik thuk tuk deman pu nga hakima bahano ai jaza chas debos yeju khodanar sangmani fagriang

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वज़ीर-ए-आज़म के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाज़ेह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के मुसलसल काम करती रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर भी तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के सिलसिले में समाज

दरेद्याना आंगणवाडी मलसांसक डिजिटल जोस्ते का पोषण ट्रेकर न्यम्बो थुते होत दरे सकपा करोड़ रुगु अधिफान तो स्थोबे न्योतीन द्यूज बसे फ्रून खोखपा हसायोत खन यंग ओरजेन तंखन अमान लार ग्यालाल तालुक शेन योतीन नाते जनशकोनी लोकपार थमोनी अनुक रंग पो चतक जकपार गोशाजीन यंग रंग युल न खोरपो गजाई किल्लत पेकाना थारिंस जकपार गोशाजीन अचुनोन मतंग सगस दिल जानुक गणेश उत्सव रिनस्तिस न हिलिंग्स न्यंबो मल्ला क्योंस गणपति बापा मीमांग सी छोक्स नार गसुस बासों यंग खारखोर गांगमा गमयंग गंग अचुनोन भगवान गणेश गख सख थगरिंग्स बखन शेस क्यूद यंग नोरोलास जुनी गुजुक सी तखनेगिन क्वेफिया छेजलुस पो फयुल सा मेन मा फिस्ते युल सगयानु गंग रगाखान रिक थोंग मा छेन योतीन पंतहुवन थिरी खानून खोंग थाईलैंड न इंसुक यंग देरी फ्राफिकानेट जरी चोरबा छात खुल्लो चुरबी नसे का यो चना खुए बावास खुआ भगवान गणेश नक्शा चिक स्केच लतांस गास खुएर गलुक्स पो स्केचसों खुस भगवान गणेश नथुते यो पी रिवायत सकर गला बसे सिस तस्पा बस यंग शुफक जबी दलस प्यंग स्प्रल्स को भारत न नेपाल यंग लुक्सोर गेस्टिज यंग खोरेन खुआ महाराष्ट्र ने न्यम्बो लुक्सो थुदलुक्स शिकदुक अष्ट विनायक रिवायत पो जिक सिरियाब ना खोस रेस्पा खाचिक दिर यास्त्रित पे जिसखोर बसेन खुरे फ्रलुक्स पोस बसे थाईलैंड अकीदतमंद सगयानुक अष्ट विनायक यात्रा मना मिंगुं छेन योतीन लोंगिस्तोंगिस यंगनुक खोस थाईलैंड चन्नुस प्यंग चनंग माई जर्स्यंगनुक गणेश हिमल म्यूजियम चुस यंग दरे दियानुक स्तोंगचू बसे खिमो गणेश कुयाक्से योतीन म्यूजियम प्यंग थोसलुक जोत खान सगिफिया इष्ट विनायक स्कोर खोरंग यक्से योतीन गौज बेस्पा चीगा भारती बेस्बा जोरचा मेतांग दे मलस्यांग आदित बिंग्रेसिस मोतुगी तुसुत श्री का गणेश पूजा दुर्बत्सुक यंग लोक्सो क्षिमजिक बा छात्सुक दिवस नतांगा फिस्ते युल सगा नुगांग भारती छेजलुक्स रिगजुंग यंग थोसलुक्स पुआ चामचिक रिनस्तिस साल बाद चुक जरे मोजिन छेत गणपति बापा सख न्यम्बो बरकल दने लुशिक अचुनोन मन की बाती सिर्फ ग्यबनोन यंतंग मिमंग सिचोक्सना लोखसोश मंग ना खतु सकिका ना फ्रिन ले बाचेत यंतेस द्याजत स्पेरान ना गोजुक गुमजिक ना कालें जुक्षा जंग खरकोर द्रुलेन योत्पी लजोन ला यंतेस तोत पना थेप संदे लसपुआ यर योंग मत ग्यास्त्रित ए मलसानी नुगंग मिसे फुटखन सगा मन के बाती नर्चान स्पेरानिस खुद सालेन्योत यंती रुख ना लखथुतिका नातेस दि बेस्पो दुन लखेरित योंग मीर गस्तोन सक रंगी जंजोस ना अचनोन न्यम्बो थत्कार गम्यंग मन लखुवन जुक्षित यंग रेश्चिक यंतं सगा निजू यंतं गमाशस दे नमस्कार।

0: दस सौ 35 प्रोग्राम की न्यूज़ पिन मन की बात पूरी इसका त्यानुक मीडियम में क्या दिया आकाशवाणी करके दिन
1: आज तो पार्टी चाहिए
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे
3: आइडिया यही करते हैं पार्टी
2: पिज्जा पार्टी ये चल अपना कार्ड और पिन दे
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें
2: बाय गर्ल्स कहाँ जा रही है सुना नहीं नो शेयरिंग
3: आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे
4: तीन महीने में पैसे डबल
5: वाह फास्ट और हाई रिटर्न्स भी
4: क्या वाकई ऐसा है कल तो नहीं था यहाँ
5: और कल होगा भी नहीं तूने कभी पांच ओवर में डबल सेंचुरी मारी है
6: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं
5: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे
7: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के
5: और फास्ट बोलिंग से भी आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे
8: चैंपियन नहीं आए अब तक
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है
2: बिल हो रहा है
3: चल अपना कार्ड

0: पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी चौकन्न रहें।
1: शब के 8:30 हो चुके हैं। पेश खदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर आपका दोस्त एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामेईन की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। फौजी भाइयों, आज के प्रोग्राम में हम समाप्त करेंगे चंद देशभक्ति फिल्मी नगमे। आगाज करते हैं बॉर्डर फिल्म से ये नगमा।

0: ضبط البروغرام ينمت بين يلسون مع مين في الأمريو ميوكا ديو أكاشواني كارجلين كستا أكاشواني دلي كنا هندي أنجرزي دونا أردين خبر ريلي بيت ريلي لا دنگ بازات
1: نمسكار آكاشواني سي سماچار سندھیا کے ساتھ میں جایا بھارتی प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मिढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
2: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के

0: बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की

0: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
3: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
3: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और

0: लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
1: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
2: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
1: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
3: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
1: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
4: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नौना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway's shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bats bronze in decathlon, women's steeplechase and 200-meter events. And India retained Nona Gaprina Dashavili Trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
1: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार-बार यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं। स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defence Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New

0: जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीरे आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वह अपनी सलामती और दिफाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक़िदा दिफा से मुतअल्लिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है लेकिन अपनी दिफाई खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे।
1: भारत शांति चाहता है लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: कौमी इत्तेहाद को कौमी सलामती का एक अहम सतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्लह फौजों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वह मजहब, जात पात, जबान, खित्ते और दीगर तरह की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाती और छोटे मफादात से ऊपर रखें। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में मुल्क की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में डीजल और रकीक बनाई गई कुदरती गैस के दोहरे ईंधन का इस्तेमाल किया गया है जिसके इंजन में तकरीबन 40% रवायती ईंधन डीजल की जगह 1400 हार्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज की काबिल जिक्र तब्दीली को उजागर किया।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने मसनूई जहानत, एआई और डिजिटल सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त के दौर में डॉक्टरों के अंदर हमदर्दी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। जनाब राधा कृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में एसयूटी एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वह अपनी बात वाजह और जामे अंदाज में पेश करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
3: नमो भारत मुल्क के पहले इलाकाई तेज रफ्तार सफर का निजाम है। ये 82.15 किलोमीटर की एक नीम तेज रफ्तार राहदारी है जिसे 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर के लिए तामीर किया गया है। इस पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका आगाज इस साल फरवरी में किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज एक घंटे से कम वक्त में पूरा हो जाता है। हर एक ट्रेन में खवातीन के लिए एक कोच रिजर्व है। इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी को रवाना करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि

0: नमो भारत जदीद नौइयत की एक हैरत अंगेज तेज रफ्तार ट्रेन है।
1: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
0: नमो भारत के एक मुसाफिर ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि इससे उन मुलाजिमीन और तलाबा को फायदा होगा जो सड़क के रास्ते गाड़ियों से सफर करते थे।
2: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है।
0: इस प्रोजेक्ट से शहरी नकल व हमल के वजीर आजम के विजन को अमली जामा पहनाने की रफ्तार में तेजी आएगी और शहरियों की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा होगी। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
3: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन मुस्तकबिल में इलाज को ज्यादा जदीद, मुअस्सर और हर मरीज की जरूरत के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 2010 तहकीकी और तरक्याती मंसूबों के लिए 174 करोड़ रुपए की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व, मुल्क और समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। आज यानी अशोक सिंघल के यौम पैदाइश की सदसाला इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, मजहबी जज्बे, नज्म जब्त और अज़्म की अक्कास है। भारत ने अफगानिस्तान को जारी अपनी इंसानी इमदाद के तहत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की इंसानी इमदाद मरकजी हैसियत रखती है। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज आईची नागोया में खवातीन की लंबी छलांग के मुकाबले में एनसी सोजन एडिपेल्ली ने चांदी का तमगा जीता। एनसी 6 मीटर 53 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे मकाम पर रहीं। मर्दों की ऊंची छलांग में भारत के सर्वेश कुशारे ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। भारतीय एथलीट हरिता भद्रा ने खवातीन की 200 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। खवातीन के 3000 मीटर स्टेपल चेज मुकाबले में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने कांसे का तमगा जीता। फिलहाल तमगों की फहरिस्त में भारत 12वें मकाम पर है और सोने के 4, चांदी के 16 और कांसे के 17 तमगों के साथ मजमुई तौर पर 37 तमगे जीत चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। भारत ने आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2026 के शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंड शेल्वी ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने ओपन जुमरे में बेहतरीन मजमुई कारकर्दगी वाले मुल्क के तौर पर अपनी मुहिम मुकम्मल की और खवातीन के मुकाबले में उसने चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की मर्दों की टीम ने हंगरी के साथ खेलते हुए अपना मुकाबला बराबरी पर पूरा किया। मर्दों की क्रिकेट में वेस्टइंडीज की तरफ से दिए गए 296 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 2 विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खाहां है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Sninge khash galuh na adrese isin isin juna salam rel moses na ngaya khan kun arengos chan kun idang singi farinya ren fachik akashwani kargili hena ngaya si ati balti skadi ju faskadi indi ngal rimpo khure chukidatun pin ar gaskat zereng un pin idan sin artakhpa yale ren moshong adring ngana yambo tam thusu po legina chacha in mayut pi karatang min deha ngati byorchan latuna ka nisar husain ustad si guana yala ngati snabe kan kun singirol na devana ngari rol na sa ju chari musong zare ju yala sa ju na salam po shochu ge ju ta dona yambo na yambo ta khakpo ngari ji me yut pana ju ari aksinu ग्रोन पाना सिरपा जरे जो मेहमान ना मेजबान जरे वान मेजबान इन मना सिरपा इन मना रियासी तमीब जोस्ते नूर एन मोशे स्नाब खन कुनी स्नोंग है फ्रोचुग ना अदरिंग याला अंगी एन मोशे का निसार म्यूली थोग है से यंग अल्तास ना जो चचा तम तू सिंगिस से यून ना जो दो विहे चुन चश्मांग बहुत जर बना चिकना म्यूल गांगे नू दोसे जर जुंग तंग सियोला सयाह जरे टूरिस्ट जरे जो यो लंग दंग खोर हैं पजर जो योंग जाक पो जो जो चांचे चाचा इन जर बायोत पो दिस सयाह कुन दिस टूरिस्ट कुन दिस टूरिज्म डे जो मलिंग क्यों है पी जो निस रे सी और गो नत पोस यो कन कुन इन सो जरबा दुगेत सो ठियांग दुगेत सो फेरल ची दुगेत सो चेकार ची दुगेत सो यूंचे को खान सो और दुगे जो गान योंग ने ची यूंचे को खान कुनी जाक कुन सजरे गान दिंग इसका नदान थुडियो पी tamtus kunine chik jusa inju ngwana nyeren moshin idang si snanga best possessionare ngada ta myuli thogha di tourism di sayahi dis mangpong ada be ame juju khor hang snang po be ngada lar go spamet ngata ngati lada khin ngata ngati karigi le nu ngati ya khor khar po binu khpit gwe hna khere la best pihna laga khsiman po chona cho jakna zangi ha ong mayut pi yong ko man beslo zerna mena kanisar ustad ngada la thong ju traumatic bzoston wa ha su gari ung ni su motorcycle kuni su cycle kuni story hanga te dinu thona so ong ju da denu na afgenu na rgufchina tipo ana hale jon kagwet tena thar parchinga te juri sa khade ju gwana dui phankhe sa yodnan kanisar yang chi kasal bingo dui hnot khesa dugo diuni phankho do dugo ju laskur ro yonte ot pide mal chong do thon mana de laskur bekhan kula de chong apel bekhan kula dukandar kun zare ju do la laskur sa gwe ju ta hnot khel asas ne dikhe ro do sa yod ju smyokhnal mamosa don la lofse ong ju don khorenchi don sa chapse gwe ठीक है सलबी मोदी आंगस ब्योक से ना दी तम थूस पर जाम से आते बिल छा गुद योंग लुक से नुचा आज मैंने यहाँ पेरा जरबा शेस्कान लेगी खसपोंग ने चिकिन जू रन मोसेस ना बेखन कुल
1: जो फोनो कलीम या चोक पदल लंगा तिस ना बेखन का फोनो अशिनुमून तमाम ठीक तुला देखन ना यहाँ लसा या मिशो से इंसान जी से या ना चोक नाचीज मिला कीमत ना से जूनी के क्यों प्याज सेरिमो अगर तरक्का फनखे दो योत की जू निका बेरोजगार नती रोजगार मिथखन का फोन मामू योत होटल कुन गेस्ट हाउस कुन महजोल गुआना कमाई दो निकाना मुलगा गेस्ट हाउस कुन होटल कुन छो छो